0: कन्वर्ट करना है एज अ कैफे. जी हाँ, उन्होंने कैफे बनाया गनी आर्ट्स के नाम से और उस कैफे को उन्होंने जो है बहुत रंग दिया है, बड़ा खूबसूरत पेंट के रंगों की तरह का उन्होंने उसको रंग दिया है. और किस तरह की ये सोच उनके साथ आई, उन्होंने कैसे इस चीज़ को स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलें आईं, ये सब हम उनसे डिस्कस करेंगे. जी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में सना उस्मान को. अस्सलाम वालेकुम सना.
1: वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप?
0: जी सना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले तो आप ये बताइए पाकिस्तान के वेदर की क्या कंडीशन है वहाँ पे? जी वेदर जो है आपको पता है जोहान्सबर्ग का वेदर बहुत खूबसूरत है. आज तो बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह सनी डे है. तो पाकिस्तान में सिचुएशन कैसी जा रही है वेदर की?
1: पाकिस्तान में इस टाइम मॉनसून चल रहा है. अगर वेदर को देख के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पाकिस्तान में तो खैर मिला जुला मौसम चल रहा है. गर्मी भी है और खुशगवारियत भी है, खूबसूरती भी है. और
0: और पता ये जो है यही बड़ी खूबसूरती अल्लाह सुबहाना वताला की नेमतों की कि कितने खूबसूरत जो है उन्होंने जो है ये रंग और मौसम जो है वो बनाए हैं. बात हो रही है रंगों की तो सना बताइएगा कि आपका जो पैशन था आर्ट में, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट आर्ट में कैसे हुआ, फिर उसने आर्ट को आपने एक आर्ट कैफे में कैसे कन्वर्ट किया, जरा बताइएगा हमें.
1: बेसिकली मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप पहले ही इंट्रो दे चुकी हैं कि मैं जो आर्टिस्ट होता है वो बाय बोन आर्टिस्ट होता है. वो किसी भी फील्ड में अपनी अपना करियर बना ले, लेकिन उसकी जो अंदर का एक तख्लीकी इंसान होता है वो हमेशा जिंदा रहता है. तो इसी तरह मैं भी आर्टिस्ट ही थी, शुरू से आर्टिस्ट थी, बचपन से आर्टिस्ट थी. बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, हैंडवर्क बहुत ज़्यादा किए और मास्टर्स मैंने फिर हिस्ट्री में किया. लेकिन बात फिर वही ख़त्म हो गई कि जो आपका अंदर का इंसान होता है बेसिकली वही आपका असर होता है. और मेरे अंदर से मैं आर्टिस्ट थी तो फिर मैंने पेंटिंग उसी को देख के इसको पेंटिंग को शौक के साथ साथ प्रोफेशन भी की तरफ फिर मैं ले आई.
0: राइट, सो ये जो आपका प्रोफेशन है, जैसे मैं आपके पीछे देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव आपकी चीज़ें हैं जो आपने क्रिएट किया है, तो इस कैफ़े का आइडिया आपको कैसे आया और आपने क्या सोचा कि आपके इस आर्ट को किस तरह से लोगों तक आसानी से पहुँचाया जाए? कुछ और भी कर सकते थे आप?
1: बेसिकली मेरा जो गनिया आर्ट का जो एक आइडिया था, मैं अपना एक ऐसा आउटलेट बनाना चाह रही थी जहाँ पर मैं अपना आर्ट को डिस्प्ले कर सकूँ. क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं एक आर्ट कर रही हूँ, मैं एक हुनर मेरे अंदर है, मैं अपनी पेंटिंग्स बना रही हूँ, तो मुझे उसको प्राइवेटली कैसे शोकेस करना. तो फिर जब मैंने अपना एक आउटलेट बनाने का सोचा जहाँ पे मैं अपना आर्ट तख्लीक सारी दिखा सकती हूँ वहाँ पे चीज़ों को, फिर जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, आर्ट तो खाने और पीने के बगैर तो काफ़ी नहीं होता कि जहाँ पे हम बैठें, गप शप करें, चाय कॉफ़ी पिएं और साथ अपने आर्ट को भी इंजॉय करें.
0: अच्छा सर, ये भी बड़ा कहा जाता है कि जो आर्ट का और कॉफ़ी का बड़ा जो है वो बिल्कुल गहरा ताल्लुक है. आप क्या समझती हैं, जैसे मैंने आपकी बात किया कि आपने आर्ट को अपने प्रमोट करने के लिए कैफ़े का ही इंतखाब किया, तो आप भी ऐसी कुछ किसी आदत है आपको कॉफ़ी एंड आर्ट जो है ये आपके साथ साथ हैं?
1: बिल्कुल ऐसे ही है. जो आर्टिस्ट है वो पीने चाय और कॉफ़ी का तो बहुत शौकीन है. उसे ये होता है कि आपको नए नए आइडियाज आते हैं, साथ आप एक कॉफ़ी का सिप लेते हैं, साथ आप एक रंग लेते हैं, आप इन चीज़ों को मिला के एक नई क्रिएशन बनाते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से उभर के आती है. और कॉफ़ी, आप जब तक एक इन्वायरमेंट को इंजॉयमेंट नहीं बनाएंगे ना, जब तक, क्योंकि कॉफ़ी और चाय जो है, टी जो है, और वो है आपकी सेटिस्फेक्शन. ठीक है, आप उसको एंजॉय करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, आपके अंदर आपको रंग समझ आएंगे, आपको क्रिएशन समझ आएगी. फिर इन दोनों के इंतजार को मिला के मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया एक्सपीरियंस किया जाए ताकि लोग कॉफ़ी भी एंजॉय करें और अपना आर्ट, मेरे आर्ट को या अपने आर्ट को जो वो बनाते हैं यहाँ बैठ के, उसको भी वो अप्रिशिएट भी करें और उसको क्रिएट भी करें.
0: सही. अच्छा सर, बड़ा मुश्किल होता है आइडियाज़ को जो है उसको अमली जामे पहनाना, उसको हकीकत में लाना. तो आपने माशाल्लाह अपने इस आर्ट को हकीकत में लेकर आई, बड़े चैलेंजेस आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी. तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको लगी और जो आप समझती हैं कि अगर कोई इस बिज़नेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें.
1: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपकी आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट, कि ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि आइडिया तो आपके पास है लेकिन जब तक उस आइडिए को आप अमली शक्ल देने के लिए एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है।
0: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
2: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media. When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415. Or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Hey, Gulam.
4: Yeah?
3: Did I return your lawnmower last month?
4: No, bhai, you didn't.
3: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
5: With Randri Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randri Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randri Jewelers, the family name you can trust.
6: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
7: Are you banking with convenience, transparency and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point of sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
2: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media.
0: जी, वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी। हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान, और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया। अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज़ को करने में और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं अपने शौक से भी और अपने काम से भी। तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, इससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
1: देखिए, बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको। आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है। मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़े बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं, आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात कि आपके अंदर का हौसला, हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है और कि नहीं, हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पांव पे खड़े होके अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना है। तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
0: सही. तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है. अच्छा मैं चाहूंगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसेस के भी के बारे में भी लोगों को बताएं जरा. आप थोड़ा सा जरा अपने कैफे की तरफ जरा रुख कीजिए. मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसेस के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थॉट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीज़ें आप ज़रूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाज़ा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं अगर आप कर सकें.
1: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है.
0: राइट.
1: वॉल हैंगिंग, ठीक है. इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है. फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है. देखिए इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है. तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे. यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस, ठीक है. ये टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये वुडन ट्रेज हैं, वॉल हैंगिंग है. इसमें ये है कि हम आप मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि खवातीन को शौक होता है घरों को सजाने का, ठीक है. वो अपने घर को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भी होता है कि उनको अपनी पुरानी और अपनी जहेज की चीजों से, अपनी अम्मियों की चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है. टाइम बाय टाइम सम टाइम के बाद चीजें अपनी रौनक, अपनी चमक खो बैठती हैं. तो जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर आपने अपने खवातीन जो है या कोई भी, आप अपने आर्ट को वेस्ट मत करें, अपने सामान को वेस्ट मत करें. हम पुराने से पुराने फर्नीचर को भी आपको नया करके दिखा सकते हैं कि जी आपने अपनी चीज जाया नहीं करनी. आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको न्यू पेंट कर सकते हैं, आप उसको नया रंग, नई जिंदगी उसके अंदर फूंक सकते हैं.
0: ये बेहतरीन है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात किया. क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, अपने अम्मी की कोई प्यारी चीज़ है जो हमारे दिल से बड़ी करीब है और हम उससे जो है कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल जो है खुश हो जाता है. हम उसको कहीं और वेस्ट नहीं करना चाहते या उसको कहीं और रखना नहीं चाहते. तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है जो आपने बताया. अच्छा सना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आपके माइंड में क्या है? हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया है, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है. आप ज़रा बताइएगा फ्यूचर प्लान्स आपके कैफ़े के बारे में आपके क्या हैं.
1: कैफे के बारे में यही है कि ये एक जस्ट एक कैफे ना रहे, ये एक रिकग्नाइज्ड, मैं इसको क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे फूड कल्चर बिजनेस और कम्युनिटी एक साथ आए. मुस्तकबिल में मेरा यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और खवातीन नौजवान सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने आर्ट को शोकेस करें यहाँ पे. और सबसे बड़ा ख्वाब मेरा यही है कि अगर यहाँ आर्ट का लोग नाम सुने तो उनके पास सिर्फ एक कैफे ना आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, इंस्पिरेशन का तस्वर उनके जहन में आए. और शायद यही पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात होगी कि हम एक बिजनेस बिल्ड ना करें बल्कि हम एक लेगेसी बनाएं जो दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंस्पिरेशन दे.
0: ज़बरदस्त सना, ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है. और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं जो अपना नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम में स्किल्ड हों. आपको जो है इस तरह के, अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे सना ने बात की इनके कैफ़े में कि बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उन वर्कशॉप्स पर आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, ताकि जो है रंगों से न सिर्फ आप हों बल्कि रंगों से आपको खेलना भी आना चाहिए. आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं जो रंगों से भरी हुई हैं. आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, माशाल्लाह बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, मतलब आप जितना रेनबो के कलर से भी आप निकालें चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी है जो रंगों से भर जाती है. और ज़िंदगी में रंगीनियाँ भी लोगों के अच्छे अखलाक से और अच्छी चीज़ों से, सदका जारिया से आती है. तो आप अपने इस काम को सना जारी रखिएगा और हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में ज़रूर कामयाब होंगी और इसी तरह अपना इल्म आप सीखें और सिखाएं और लोगों के लिए जो है वो राह हिदायत वो बनती चली जाएं. बहुत शुक्रिया आपके इस साथ का. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. जी थैंक यू वेरी मच. ये थी हमारे साथ सना उस्मान. और सना उस्मान जो है शी जस्ट मेंशन कि किस तरह उन्होंने अपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, किस तरह उन्होंने जनाब उन चैलेंजेस को साइड पे रखा, अपने पैशन को उन्होंने आगे रखा और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने की एक राह जो है वो उन्होंने हमवार की. हमारे साथ रहेगा. टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अपने न्यू गेस्ट के साथ. स्टे tuned with Salaam Media.
4: Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media, coming to you live from South Africa.
8: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Visa card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
9: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
10: When you give water, you bring life to drought-affected communities, providing fresh water for drinking, cleaning, and growing. Your support helps Islamic Relief implement water, sanitation, and hygiene projects, providing clean water to communities around the world. Donate now to Islamic Relief.
11: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there, in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं वी वेलकम यू एंड उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा अपना भी पार्टिसिपेशन ज़रूर दीजिएगा हमें बताइएगा कि आपकी जो है आपका फीडबैक क्या है और आप भी क्या सुनना चाहते हैं जी हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लंदन में होती हैं अच्छा इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूँगी क्योंकि ये इनकी बहुत सारी काविशें हैं बहुत सारी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो मैं उसमें से लिटिल बिट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जैसे कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जर्नलिज्म में इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर ये काम करती हैं इसके अलावा पीपल्स पार्टी यूके की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जी हाँ उनकी खिदमत जो है वो अंजाम दे रही हैं पॉलिटिक्स में है पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हैं और अपनी कौम के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो करने की कोशिश करती हैं जाहिर है जब आप एक स्टेज पे होते हैं या आप एक ओहदे पे होते हैं तो आपको क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कौम आपके साथ तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं अच्छे से अच्छा जो है वो करना चाहती हैं अपनी कौम के लिए तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगी मिलते हैं शगुफ्ता नसरीन से अस्सलामु अलैकुम शगुफ्ता जी
2: वालेकुम सलाम मरियम थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट एनीवे सो वी ऑल नो यू
1: सो जी बट आप ही एक वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं और डेफिनेटली कि आपको आज हमारे जोहान्सबर्ग में ज्वाइन करके आपको शगुफ्ता जी कैसा लग रहा है
2: Absolutely wonderful, absolutely wonderful. I mean, local तो हम आपको पता है local या पाकिस्तानी media में UK media में अक्सर जाना होता है लेकिन Johannesburg it's
1: जी एग्जैक्टली तो ये मैं चाहती थी बिल्कुल कि आपकी आवाज़ आपका मैसेज जो है वो सिर्फ यूके तक ही महदूद ना रहे आप माशाल्लाह आपको दुनिया जो है आपके पर्सपेक्टिव को समझे और आपके मैसेज को समझे अच्छा शगुफ्ता जी स्टार्ट करते हैं आपसे माशाल्लाह आपकी कम्युनिटी लीडरशिप माशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा आप कंसल्टेंट हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी है मैं पूछना चाहूँगी आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिटी है उसकी असल डेफिनेशन क्या है असल पहचान क्या है क्योंकि जब हम इन कंट्रीज में रहते हैं अपनी कम्युनिटी की पहचान बनाना कितना डिफिकल्ट है और फिर उसकी पहचान के साथ उसको मेंटेन करना ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए
2: देखिए मरियम हम सब जो है वो जाहिर बात है एक माइग्रेंट कम्युनिटी से हमारा तालुक है पाकिस्तानी डायस्पोरा से
1: जी
2: तो आप कहते हैं कम्युनिटी की पहचान क्या है बेसिकली जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं या अपनी कौम से बाहर निकलते हैं
1: जी.
2: तो हम उनके सफीर होते हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट अपने मुल्क को अपने फेथ को अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है
1: जी.
2: तो एक कम्युनिटी की इससे बेहतरीन पहचान नहीं है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है उसको पोर्ट्रे करे जब दूसरे लोगों के साथ जाए और अपने फेथ अपने कल्चर का पॉजिटिव फेस जो है वो लेके जाना होता है आपको और उसको इम्प्रूव करना होता है तो आई थिंक ये हमें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी जगह पे किसी भी जगह जहाँ कम्युनिटीज माइग्रेट करती हैं सबसे पहले उन्हें अपनी जो वैल्यूज में उनकी बेस्ट वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए ताकि जो आपका होस्ट कम्युनिटी है वो आपको समझ सके वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके
1: बिल्कुल
2: और अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे और नहीं अपनी वैल्यूज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक नई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते
1: बिल्कुल बेहतरीन
2: तो, यहाँ हमें जो है ना ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं जब हम कोई भी जाता है जब माइग्रेशन करता है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जाहिर बात है आई रिप्रेजेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी तो ये चीजें मैंने देखी और अब तो अबाउट 30 years का एक्सपीरियंस है जिसकी अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं आप भी जानते हैं
1: जी लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर हर कुछ तो 100% नहीं होता कहीं ज़ाहिर अप एंड डाउन होता रहता है लेकिन इन अप एंड डाउन में आपने अपनी इस चैलेंजिंग पर्सनालिटी को अपने काम को जारी रखा चैलेंजेस को फेस किया अच्छा शगुफ्ता जी आजकल की कम्युनिटीज़ में सबसे अहम ज़रूरत आप क्या समझती हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो हम ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी आप काम करिए उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और उसमें कम्युनिटी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए
2: देखिए मरियम जी, सारी चीज तो बेस ही कम्युनिटी पे होती है और लोगों पे बेस होती है। और हमारा एक देखिए, अगर मैं प्री 60 या 63 से आपको लेके आऊं, उस वक्त हमारे लोग आए थे एक वर्किंग पर्सपेक्टिव के साथ कि हमने जाना है, थोड़ा काम करना है, थोड़े पैसे बनाने हैं और वापस अपने वतन चले जाना है। तो उस वक्त उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे उनको एंगेजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और उनकी अपनी मुश्किल थी। हमें उन बुजुर्गों को सलाम करना चाहिए, आज की जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह इन मुल्कों में आके मेहनत की, कितने सख्त हालात में। अगर आप अब के हालात देखें, जहाँ इतनी लेजिस्लेशन हुई है, इतने लॉज हैं, और फिर भी इस वक्त भी हम डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया और तरह की चीजें, हेट स्पीच सब फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं जो कि ब्रिटिश बोर्न है, तो आप सोचे प्री 60s क्या होता होगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही जांफिशानी के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, और जब उनके बच्चे जारी बात आए और वो यहाँ सेटल हो गए, तो अब वापस वापसी का रास्ता जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। तो वो उस वक्त की जरूरत थी, काम करना, अपने काम से काम रखना, अपने आप को सेफ रखना, इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाना। लेकिन अब चीजें जो है शिफ्ट हो गई। आप देखिए ना, 40-50 ईयर्स के बाद अब क्या है कि अब हमारे बच्चे जो है, वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, हमारे बच्चे जो है वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है। अब हमारी जरूरतें चेंज हो गई, अब सिर्फ जॉब करना, पैसे बनाना, अपने मुल्क वापस जाना या कुछ इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़ गए। अब हमारी जरूरत ये है, हमारे लोगों को बड़ी ही कॉन्शियसली ये चीज सोचनी है कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट गुजर चुका और हमने एक रोल प्ले किया, लेकिन इससे फर्दर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो हमारी इन कमिंग जनरेशंस हैं, उनके लिए हम एज ए बुजुर्ग क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें हमारा इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसके साथ यहाँ की जो वैल्यूज है उनके साथ इंटरेक्ट करना, अपनी वैल्यूज को शेयर करना, अपने फेथ की वैल्यूज को शेयर करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज, चूंकि इन कंट्रीज में बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत सारी हर चीज के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है गवर्नेंस का वो है डेमोक्रेसी, वो थ्रू पॉलिटिक्स। तो हमें पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली और हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड भी कर, एजुकेशन है तो ले। मैं ये नहीं कहती कि सब आज ही इलेक्शन में खड़े हो जो, सब आज ही मीटिंग्स में चले जाओ, मगर मैं कहती हूँ कि आप सिस्टम को समझें और अपने बच्चों के अंदर जो है ना, आप इसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करें। जब हमारे, चूंकि हमारा थोड़ा कल्चर भी है बैक होम में, पॉलिटिक्स भी आपको पता थोड़ी गड़मट हुई हुई है, तो हम वही चीज, वही जुमला यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदी है, पॉलिटिक्स तो करप्ट है, पॉलिटिक्स तो खराब है। पॉलिटिक्स खराब नहीं है, ये सिस्टम खराब नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं। प्लीज इन दो चीजों में फर्क करें।
1: अच्छा जी, ये आपने बड़ी प्यारी बात किया। यहाँ पर ही मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि जिस दौर की आप बात करें, आज भी पॉलिटिक्स में जाना विमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, आपको कितनी डिफिकल्टी आई होगी, कितनी मुश्किलात आई होंगी, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल, देखें डिफिकल्टी हालांकि बहुत सेट्स में होती है, आपको पता है क्लास सिस्टम्स होते हैं, मैन को भी आती है, लेकिन विमेन को ज्यादा आती है। उसके में हमेशा सब कहते हैं कि आप औरत की क्यों बात करते हैं, तो मैं एक बात बड़ी वाजह करना चाहती हूँ। जब मैं एजुकेशन कर रही थी, या मैं स्ट्रगल थी, या मैं एक पोलिटिकल पर्सन के तौर पर मेरी स्ट्रगल थी, तो मैंने कभी सेटअप नहीं किया था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए बात करूंगी। लेकिन जब मैंने औरतों का ज्यादा इस्तेहसाल होते देखा, मतलब कंपैरेटिवली जब आप बात करते हो तो कंपैरेटिवली करते हो, तो ऐसा नहीं है कि हर औरत को प्रॉब्लम है या हर आदमी को, लेकिन बिटवीन मैन एंड वुमेन विच सेक्शन इज अफेक्टेड मोर। सो वो मैंने देखा कि वुमेन हर लेवल पे जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है आपका, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। मुझे अपने लिए भी ये है कि जब मैंने शुरू की, और मैं बहुत ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन यंगस्टर्स थी कि मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ मिला। जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स में आंखें खोली, तो मैंने उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की, उन्हीं की स्टूडेंट मूवमेंट का मैं हिस्सा बनी, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्हीं के पेपर से, उनके जो फादर का पेपर उन्होंने शुरू किया था मुसावात, डेली मुसावात, उसी से मेरा जर्नलिज्म का आगाज हुआ। मैं पार्लियामेंट और सेनेट कवर करती थी, तो आई वॉज लिटरली विद बीबी एज मैनी आवर्स शी वाज देयर।
1: क्या बात है।
2: तो
1: शगुफ्ता जी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी आई, अब आपने जर्नलिज्म में भी आई, प्रेशर कितना ज्यादा था? क्योंकि जर्नलिस्ट पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और फेयर जर्नलिज्म करना जो है वो भी एक जरूरी चीज है। कैसे मैनेज किया आपने इन सबको?
2: मैनेज ऐसे किया कि देखिए, हम एक हमारा जो एक आपको पता है जर्नलिज्म में भी ब्रांचेस हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट के जर्नलिस्ट रहे, तो लेफ्ट का जर्नलिस्ट जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, सो आई वाज लकी इन दैट सेंस। एक तो पेपर पार्टी से अटैच था उस वक्त, और दूसरा चूंकि मेरे जो उस्ताद हैं मुन्नू भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और बहुत सारे नुसरत जावेद साहब माशाल्लाह, ये हम छोटे छोटे थे और इन्होंने हमें गाइड किया, वैल्यूज दी और इतने एथिक्स दिए। आप यकीन करें कि आजकल जाहिर बात है चीजों में चेंज आती है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे येलो ब्लैक पता नहीं कौन कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, और जिनका जर्नलिज्म से ताल्लुक भी नहीं है उनको जर्नलिस्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है जो कि, लेकिन आप एक डॉक्टर, एक इंसान जब तक वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता आप उसको डॉक्टर नहीं कहते।
1: Exactly.
2: इस कंट्री में आप 10 कोर्सेज और डिग्री नहीं करते तो आप टीचर नहीं बनते।
1: लेकिन शगुफ्ता जी, पैशन भी तो देखे ना, हर बंदा जो सीखना चाहता है, आप उसका लर्निंग प्रोसेस भी, तो वो अगर सीख रहे हैं तो यही हमारी कम्युनिटी की खास बात है, हमारे लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, हर चीज वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा जी गुप्ता जी, बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है, यंग जनरेशन है, हमने पाकिस्तान को की मोहब्बत उनके दिलों में डालनी है, जाहिर है उनकी ब्रॉटअप आपने माशाल्लाह वहां पे की है, आप माशाल्लाह पूरा लीड कर रही हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसी एडवाइस आप प्लीज पेरेंट्स को जरूर दीजिए कि किस तरह वो अपने मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि अगर आपने बात करते हैं ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से जरा, क्योंकि उनको ये होगा कि हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे डालें उनके दिल में?
2: देखिए मरियम, मैं चूंकि हर बात की मेरे पास एक शुरुआत होती है, तो मैं शुरुआत से बताती हूँ कि कोई भी दरख्त अपनी जड़ों के बगैर ऊपर नहीं जाता।
1: क्या बात,
2: तो वही रह जाएगा या जल जाएगा।
1: सही।
2: आपके बच्चों की जो फाउंडेशन है ना, फखरिया तौर पे आप कहेंगे कि यो मदरलैंड इज पाकिस्तान, आप उनके दिल में उनकी मोहब्बत इंस्टॉल करें। पॉलिटिक्स पार्टीबाजी को छोड़ दें, पार्टियां आती और जाती रहती हैं, ये मैं आप पहले भी अर्ज करती हूँ, मैं यूके में भी लोगों से कहती हूँ कि पार्टी सिस्टम को तबाह ना करो, लीडर्स आते और जाते रहते हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, मेरी भी जाहिर बात है जब वोट होता है तो आपकी एफिलिएशन भी होती
1: Exactly.
2: है, हर इंसान का वोट है, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्टिल वोट तो है ना मेरा, मैंने जिसको वोट देना, ऑब्वियसली आई हैव पर्सनल एफिलिएशन या मुझे अच्छा लगती है वो पार्टी, लेकिन पार्टी से कतई नजर, क्योंकि आपके बच्चों ने वहां जाके वोट नहीं डालना, उनके अंदर आप मुल्क में पार्टी की वजह से तनफर पैदा ना करें। हाँ। आप उनके दिल में मादरे वतन, वो आपकी माँ है, मैंने कहा ना हम जहां भी चले जाएं, हम ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो आई लव ब्रिटेन, ये यूके ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं यूके को दिल से एक्सेप्ट करती
1: हूं। क्या बात है,
2: अपना अपना मुल्क, लेकिन मेरी माँ जो है
1: वो
2: मेरी जड़े वहां पे है, मेरा जो जड़ है वो पाकिस्तान में, और मेरे बच्चों की, अब आप देखिए मरियम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आज से 1000 साल के बाद भी जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो फॉर्म पे ब्रिटिश पाकिस्तानी लिखेगी एज आइडेंटिटी।
1: जबरदस्त।
2: सो यू विल नेवर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम योर फैमिलीज और फ्रॉम योर
1: हमारी कोशिश यही होती है कि जहां जहां हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें, उसकी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, हम वो अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करते हैं। अच्छा शगुफ्ता जी, आपसे अब आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए कि आप माशाल्लाह कुछ सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, और शौक भी बताइएगा कि कहाँ से हुआ, अम्मी से हुआ, अबू से हुआ, किसी फैमिली मेंबर से आपको शौक हुआ लिखने का, और क्या लिखती हैं?
2: देखिए मेरे पेरेंट्स, चूंकि उनकी ये जो दुनिया वाली स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी जो कि हमारे बुजुर्गों की एक मिरास रही है, तो बहुत मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुई, जैसे आपको मैंने बताया कि मोहतरम मुन्नू भाई बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, पोएट्री का, उनसे हुई और मेरा सबसे पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था वो प्रवीण शाकिर साहब जो कि बड़े सगीर की पाकिस्तान की बहुत बड़ी फीमेल पोइट्रेस रही हैं फिर वो सारी बात उनकी एक हाथ से मिला थोड़ी
1: शगुफ्ता जी हम इंशाल्लाह उनसे ही बात की शुरुआत करेंगे टाइम हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का विल सी यू आफ्टर जस्ट अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग
2: थैंक यू
3: The following is a paid political advertisement by the Al-Jama'a Political Party.
4: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al-Jama'a effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al-Jama'a aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure. Regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al-Jama'a effect. South Africa's alternative political party, the Al-Jama'a effect.
3: That was a paid political advertisement by the Al-Jama'a political party.
5: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
6: There are over 200 million orphans globally. We can't help all of them, but what if we each helped just one? The El Imdad Foundation now gives you an opportunity to help just one orphan from Syria or Palestine. For just 500 Rand per month, you can help safeguard the dignity of an orphan by assisting them with basic needs such as food, clothing, shelter, medical care, and attention. Our orphan sponsorship program allows you to track the progress of your orphan through regular feedback. Make a difference in the life of an orphan today. Visit alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
7: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
8: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
0: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी लाइव फ्रॉम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जी हाँ टाइम हुआ चाहता है 11:53 और हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता नसरीन लंदन से और जी शगुफ्ता जी आपसे बात हम जारी रखेंगे बात हो रही थी आपकी शायरी की आपके कलाम की तो ज़रा बताइएगा माशाल्लाह आपकी फेवरेट जो थी प्रवीण शाकर उनको कौन नहीं जानता उनकी शायरी को कौन हर दिल को छू जाती है उनकी शायरी तो आप उनसे इम्प्रेस हुई और आपने खुद लिखना शुरू किया तो आप ज़रा कुछ सुनाइए हमारे देखने और सुनने वालों को
2: थैंक यू मरियम जाहिर बात है मैं बेसिकली तो एक राइटर हूँ
1: did.
2: So poetry hamesha pasand rahi, message acha lagta raha, bahut short usme aap ek message de sakte hain. To abhi thoda sa time hota hai to kabhi kabhar likh leti hu, abhi koi main proper usse nahi likhti. Aur ek main just aapka jo previous question tha uska ek message main repeat karna chahungi ki
1: sure.
2: please main apne sab jis bhi country mein hamari community rehti hai Pakistani diaspora main unse request karungi ki please politics ko positive way mein discuss kare apne bachon ke samne aur unko leke aaye kyunki future mein kabhi bhi khali chair jo hai wo aapko huquq nahi dilati agar aapke bache un seats par nahi baithe तो फ्यूचर में लेजिस्लेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा और जारी बात है हर कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने फेथ और वैल्यू के हिसाब से अपना नुक्ता नजर रखती है और फिर वो लेजिस्लेशन बनती है तो प्लीज इस बात को याद रखें कि एम्प्टी चेयर नेवर स्पीक्स फॉर यू यू हैव टू बी ऑन दैट सीट इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको बकायदा मेरा एक प्रोजेक्ट है मैं बात करती हूँ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इस पे लेट्स टॉक पॉलिटिक्स तो उसमें जब ये लोग डिस्कस करें उसमें उसके प्लस और नेगेटिव सब सामने आते हैं लेकिन हमारी इस वक्त की जरूरत है और ये इस्लामिक चीजों के साथ भी कंपेटिबल है आप देखें इस्लाम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बैद जो है बेसिकली वन वोट लिया जाता था वोटिंग के जरिए आपकी खिलाफत
1: सही तो शगुफ्ता जी हमारे साथ हैं और शगुफ्ता जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आप जहां पर भी इस दुनिया में मौजूद हैं आपका जो मैसेज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हर चीज़ को आप पॉजिटिव लें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आ सके तो ये थी हमारे साथ शगुफ्ता जी शगुफ्ता जी का थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गई है इंशाल्लाह वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया जी शगुफ्ता जी बोलिएगा
2: बस मैं ये चाहूंगी कि ये एक ये हमारे वक्त की जरूरत है इस मैसेज को जितना भी आप आगे कर सकते हैं जरूर करें और मेरी भी कोशिश है कि अपने लोगों के अंदर ये शोर पैदा किया जाए कि वो सिस्टम में हिस्सा लें और उसके बारे में बाकायदा जो है वो एजुकेशन लें
1: राइट
2: पोएट्री की आपने बात की थी मैं बहुत थोड़ा अभी लिख रही हूँ लेकिन अभी विमेंस डे गुजरा
1: जी.
2: तो उसपे मैंने एक बहुत छोटी सी लिखी थी स्टिल अंडर प्रोसेस है लेकिन एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी कि क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं
1: क्या बात
2: मेरी माँ मुझे चांद कहती थी मेरा बाबा फख्र से देखता था मुझे अपने बच्चों की मैं हूं जन्नत क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ मैं आप सबकी भी बहन हूं मैं क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं मेरे वजूद से है इस दुनिया को दुआम मिला मेरे वजूद से इस दुनिया को दुआम मिला जन्नत को झुकाया गया मेरे लिए मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हूँ मैं क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं ना जाने कितनों का हौसला
1: हूँ मैं क्या बात है शगुफ्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत मैसेज क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं यही आपकी जो है
2: उनका
1: हौसला हूँ मैं ये बहुत मतलब खूबसूरत और बड़ा इनकरेजिंग है ऐसी ही इनकरेजिंग पर्सनैलिटी रहिएगा शगुफ्ता जी हमारी बहुत सारी दुआएं वेल विशेज आपके साथ हैं आप इसी तरह तरक्की करती रहें दूसरों के लिए जो है आप रहनुमाई का जरिया बनते रहें बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ जी ये थी शगुफ्ता नसरीन लंदन से हमारे साथ और उन्होंने हमें ज्वाइन किया बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू रही इस खूबसूरत मैसेज के साथ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए माशरे की सेहत के लिए तो उसका ख्याल रखिए दूसरों में जो है वो आप अच्छी बात अच्छा इखलाक और अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर फराहम कीजिए जी हमारा वक्त हुआ जाता है हमारे एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आएंगे हम अपने गेस्ट नंबर 3 के साथ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है हमारे साथ रहिएगा स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया
9: ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स मूविंग बाउंड्रीज जॉइनिंग हैंड्स सलाम मीडिया
10: ला तकुल लिवहदी औ कैफ अस सबील
9: ह्यूमैनिटी सेट्स द एजेंडा

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: Shimmer, sparkle, captivate.
2: जी वेलकम बैक करते हैं आपको जोहान्सबर्ग से मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी प्रोग्राम में और प्रोग्राम में माशाल्लाह बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट जो हैं वो आज आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और अब आपको अपने एक बेहतरीन किस्म के गेस्ट से मिलवाते हैं बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और उनकी अचीवमेंट की मैं क्या बात करूँ माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में और सबसे बढ़कर जैसे मैं बात करती हूँ कि जो कम्युनिटी वर्क है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी के लिए काम करना आसान नहीं है तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे जो है कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले खुशी मिले और उसमें उनकी बहुत सारी जो है काविश हैं सबसे पहले तो जो उनका मेन काम है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट पर वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और उनकी एडवोकेट हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने इवेंट्स भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें वो प्रमोट कर सकें वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकें ख़वातीन को उनका सही हक और सही बात जो है उनकी बता सकें कि उनका क्या किरदार क्या वेल्फ जो है बेहतरीन किरदार जो है उनका किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ख्वातीन जो है वो किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं वो जिस शोबे में भी जाती हैं अपना नाम भी बनवाती हैं अपना लोहा मनवाती हैं और जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ जो है वो हासिल करती हैं तो माशाल्लाह वो लंदन में बहुत ज़्यादा समारा इवेंट के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी को चेयर हैं और बहुत सारा इवेंट्स जो है वो ये कम्युनिटी के जो है ये बहुत करवाती हैं अवार्ड्स जो हैं सबसे मेन जो है बात ये है कि लोगों की जो अचीवमेंट हैं ये उनको सेलिब्रेट करती हैं जी हाँ अवार्ड सेरेमनीज जो हैं ये ऑर्गेनाइज करती हैं लोगों की जितनी भी आपकी कोशिश आपकी स्किल्स हैं ये उनको जो है सराहते हैं उनकी जो है अप्रिसिएशन एक छोटी सी अप्रिसिएशन है कि आप उनको अवार्ड से नवाजें और माशाल्लाह ये लंदन में अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया अस्सलाम वालेकुम मारिया
3: क्या हाल है
2: जी मारिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ मारिया कैसी हैं आप कैसा है लंदन का वेदर जोहान्सबर्ग का तो वेदर आज बहुत अच्छा है क्योंकि ये विंटर सीजन है लेकिन लंदन में सुना है काफी गर्मी है लेकिन अब काफी वेदर ठीक हो रहा है आप क्या बताएंगी लंदन के वेदर के बारे में
3: जी बिल्कुल लंदन में तो इतना अच्छा मौसम है we've had the longest summer in a long time so bahut maza aa raha hai ab jab दिन छोटे होंगे तो फिर पता चलेगा
2: सही बात है बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि लंदन के बारे में यही कहा जाता है जरा थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है विंटर क्योंकि लोग जरा ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा है उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को मिलते हैं लोगों से बात करते हैं और लोगों से जो है ना अपना जो है गेट टुगेदर करते हैं आपके बारे में मैं यही बता रही थी मारिया कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा गैदरिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और आपका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को खुशी दी जाए अपनी कम्युनिटीज पर तो आपका ध्यान है ही लेकिन ये है कि वहाँ पर जितने लोग हैं वो एटलीस्ट इंजॉय कर सके उनके मुंह पर उनके छोटी सी स्माइल आ जाए क्योंकि मुस्कुराहट भी खेरना भी एक सदका जा रही है और माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रही है अच्छा मारिया मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप माशाल्लाह बहुत काम करती हैं आपने इसी फील्ड को क्यों चुना और आप क्या समझती हैं कि ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट हर वुमेन को पता होनी कितनी जरूरी है
3: देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है देखिए वी फॉलो हमारे जो जनरेशन है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी जो दादी नानी अम्मी खाला रोल मॉडल्स इन आवर लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने सोच

0: जो जनरेशन अबव है उन्होंने हमारे लिए एक इतना अच्छा रोल मॉडल साबित किया, तो हमारा भी काम है आगे टू बी अ गुड रोल मॉडल एंड एम्पावर वुमेन। तो मैंने 2018 में शुरू किए थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेडीज नाइट्स, 3 to 4 इवेंट्स ऑन एनुअल बेसिस। एंड उसका बस ये मकसद था कि हमारी जो खावतीन है दे फील अप्रिशिएटेड, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम आगे लेके जाएं। देखिए हर जो खावतीन है उनके दुनिया जिंदगी में कोई ना मसले होते हैं तो मुझे ये था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर करें, कोई हल उनको चाहिए हो वो भी हम उनको हेल्प करें, उसके अलावा एक
1: जबरदस्त.
0: इंजॉयमेंट का जो माहौल होता है वो होना चाहिए।
1: सही.
0: इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग ईच अदर। एंड माशाल्लाह यहाँ यूके के अंदर हमारी जो खावतीन है
1: जी.
0: उन्होंने इतना कुछ कुछ अचीव किया। वी आर वेरी लकी कि हम यहाँ यूके में रहते हैं, इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक सोसाइटी, वुमेन हैव सो मच स्ट्रेंथ एंड पावर टू अचीव व्हाट दे वांट।
1: राइट.
0: हम यहाँ आदमियों से बिल्कुल पीछे नहीं है, सो वी हैव द सेम एबिलिटी कि हम भी अचीव कर सके जो हमें हमारे दादा अब्बू
1: जी, हमारे सारे फोर
0: अंकल्स
1: फादर्स जी
0: सब
1: उन्होंने
0: भी।
1: अचीव किया. अच्छा,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है मरिया, कि आपके ख्याल में जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है उसमें खवातीन अपना किरदार किस तरह मजबूत बना सकती हैं, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगी?
0: देखिए पहले तो ये है कि कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो।
1: राइट.
0: सेकंडली आपको पता है कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग थिंग इन द यूके एंड आई एम इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। मैं काफी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स के अंदर एंड यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत हमारी खावतीन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इतनी हमारी फीमेल्स को यहाँ पता नहीं है कि हम कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम एक चेंज लेके आ सकते हैं कम्युनिटी के अंदर थ्रू पॉलिटिक्स। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी खावतीन को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आना चाहिए।
1: राइट. सही. अच्छा, जो पब्लिक अपीयरेंस है, ये जो लीडरशिप है, ये कितनी ज़रूरी है? माशाल्लाह आप लीडरशिप, जैसे आपने बात की, पॉलिटिक्स में है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताती चलूँ कि माशाल्लाह काउंसलर के इलेक्शन के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ था, यू वर सेलेक्टेड फॉर दैट. और बड़ा, मेरा तो ख्याल है कि काउंसलर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, प्रेशर भी. प्रेशर को कैसे हैंडल किया हमारी आपने उस टाइम पर?
0: सपोर्ट मेरे पास बहुत ज्यादा थी।
1: जबरदस्त.
0: एक तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जो इतनी दूर दूर से आते थे मेरी कैनवसिंग के लिए, ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते थे हेल्प करने के। इलेक्शन डे के ऊपर लोगों ने मुझे हेल्प की। जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज सो वेलकमिंग फॉर फीमेल्स। सो
1: राइट.
0: हमारा बस ये है कि जितना भी आप कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, आप अपने लोकल काउंसलर्स के साथ करेंगे, अपने लोकल काउंसिल के साथ काम करेंगे, उतना आपको वो नॉलेज भी होगा, उतना आप आगे भी जाएंगे एंड आप इंजॉय भी करेंगे।
1: राइट. बिल्कुल सही. अच्छा मारिया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माशाल्लाह जैसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करती हैं और गैदरिंग्स में स्पेशली वुमेन बेस्ड आपके इवेंट्स, अगर जो उनकी हम बात करें, तो उसमें जो है आपका मकसद जो है, जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होती है या एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आप क्या समझती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंडिपेंडेंटली भी आप अपना कुछ कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में?
0: आई थिंक वन वो कहते हैं ना कि एक बंदा या बंदी दे कैन ओनली अचीव थिंग्स लिमिटेड
1: जी.
0: अमाउंट। अगर आप कंबाइन करें लोगों के साथ आप काम करें, यू कैन अचीव अ लॉट मोर बिकॉज यू कैन डेलीगेट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड कम्युनिटी कोहेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ में काम करेंगे तो आप और भी जल्दी आगे जाएंगे और ज्यादा आप अचीव करेंगे।
1: राइट. सो उसमें जो है आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप कम्युनिटीज से टॉक करती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की अगर डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनके ख्यालात डेफिनेटली होते होंगे, उनको आप उसको कैसे ओवरकम करती हैं हमारी?
0: देखिए आपको ना एक असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ, इनके क्या मसले हैं, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, इनके क्या सोल्यूशंस हमने ढूंढने हैं।
1: जी
0: अगर आप ये चीज़ों को समझ लेना तो फिर

0: काफी इजीली आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं. डजंट मैटर कौन सी कम्युनिटी में वो पीछे से वो हो.
1: राइट right. अच्छा मारिया, जैसे आपने काउंसलर के इलेक्शंस की मैं बात करूं, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन आपकी रही है. अच्छा आपने लोगों से बात की है, लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है पब्लिक लेवल पे, तो उसमें आप क्या, आपको क्या लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस एक काउंसलर से क्या होती है, क्या उनके मेन कंसर्न्स हैं? जैसे कि अपने पाकिस्तान के भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमें पता है डिफरेंट, लेकिन लंदन के लोगों के कंसर्न्स क्या हैं? आपको क्या लगा कि किस पे ज़्यादा वर्क होना सिस्टम के लिए बेटर है?
0: देखिए, जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं ना एज ए कैंडिडेट,
1: जी
0: वो होते हैं जो आपका वोट है उसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो मेरा जो वोट था वो चिज़े कनसबरी था.
1: राइट
0: तो इट्स अ वेरी लवली नाइस एफ्लुएंट एरिया, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं, कम्युनिटी है. ज़्यादा उनका ये होता है कि कीपिंग द पार्क्स ग्रीन, जो स्ट्रीट्स हैं उनको साफ रखना, टू मेक श्योर दैट देर इज लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, टू इंस्पायर आवर यूथ, मोर यूथ सेंटर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, गेटिंग यूथ ऑफ द स्ट्रीट्स एंड
1: राइट
0: गेटिंग देम टू डू थिंग्स मोर प्रैक्टिकली. ज्यादा यही होता है कि जो लोकेलिटी होती है ना, उन वहाँ चीजें सही चलनी चाहिए.
1: सही. अच्छा, लोगों के बीच हर कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है. आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर देना चाहेंगी, किसको देना चाहेंगी कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन था?
0: देखिए, सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो आपकी फैमिली होती है. माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ऑलवेज मुझे पुश किया है कि ये चीज तुम कर सकती हो एंड तुम्हें करना चाहिए. उसके अलावा माय फादर हु इज नो लॉन्गर हियर, ही वाज अ वेरी एम्बिशियस मैन, एंड इवन हिज इनपुट इन माय लाइफ वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर जो घर की जो खावतीन होती है, जो दादी नानी अम्मी, माय मदर इन लॉ, तो ये सब के जब जर्नीज में देखती हूँ ना, तो वो मुझे इंस्पायर करती है कि मैंने हटके थोड़ा सा और उनसे थोड़ा सा आगे जाना है जिंदगी के अंदर.
1: ये कितनी ज़बरदस्त बात है. इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. मारिया से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एंड विल कम बैक जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग.
2: शिमर, स्पार्कल, कैप्टिवेट. नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस. ड्रॉपलेट्स ऑफ गोल्ड इंस्पायर्स प्रेशियस डिजाइन. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freezer card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
3: Dad, these Frimax chips are so tasty.
4: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
5: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban. Or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Your passport to gold investment.
6: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst. Reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
7: La ilaha illallah. Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
5: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
1: Gee, welcome back program. Mid morning talk with Maryam Hashmi from Johannesburg, South Africa. Ji haan, Salaam Media se hum live hain aur hamare is program ka maqsad jaise aapko pata hai ki yahi hai ki hum apni Urdu language ko promote kar saken, apni wo khawateen jo duniya mein bahut behtareen kaam kar rahi hain aur kuch na kuch duniya ke liye, community ke liye, apne mulk ke liye kar rahi hain, unko hum is platform ke zariye connect kar saken. Hamare sath maujood hain Maria aur Maria se bahut achhi guftugu chal rahi hai. Jaise maine inke introduction mein bataya ki mashallah bahut cheeze jo hain wo kar rahi hain कम्युनिटी के लिए. उनमें सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने लिहाज से भी कहूंगी कि मुझे जो चीज बहुत पसंद आई है वो ये कि वो दूसरों की सलाहियतों को सराहती हैं. जी हां, वो जो अवार्ड सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और लोगों को अप्रिशिएट करती हैं उनकी काविशों के बारे में. तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जी मारिया, मैं आपसे मेन क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी चीज है अवार्ड देना किसी को, किसी की सलाहियतों को समझना और उसको अप्रिशिएट करना. ये ख्याल आपको कहां से आया, कैसे आया, और फिर इसमें आपको कोई अगर चैलेंजेस भी आए वो भी हमसे डिस्कस कीजिएगा, और इंप्रेसिव मूवमेंट जो है या प्राउड मूवमेंट जब आपने किसी को उसकी एबिलिटीज के मुताबिक आपने उसको प्रोवाइड किया. एक अवार्ड है वो किसी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, वो आपने किसी को दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसकी क्या फीलिंग थी आपकी, आप जरा प्लीज पे रोशन डालिए.
0: मरियम, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है. जैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि देखो आपने इतना कुछ अचीव किया है और आप इतनी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बैठती हैं जहाँ हम आप हमें आगे लेके आती हैं. सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के काम कर रही हैं. एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यू आर अ रोल मॉडल एज वेल एंड आप इस तरह का अपना काम जारी रखें.
1: एंड
0: आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट वी ऑल अप्रिशिएट द वर्क दैट यू डू एज वेल एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो अवार्ड्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, बिकॉज उसका ये मकसद होता है कि एक अप्रिशिएशन किसी की मेहनत, उनकी जर्नी, उनकी जो लाइफ टाइम की मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज करना.
1: बिल्कुल.
0: अब 16 साल पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह से 16 इयर्स हो गए हम पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स को रन करते हैं. एंड वी रिकॉग्नाइज पाकिस्तानीज ग्लोबली हु एक्सेल्ड इन देयर फील्ड. एंड हम करते हैं हर साल 14 अगस्त को. 14th August because it's Jashn-e Azadi for Pakistan. And hamara sabse bada jo achievement tha na Pakistan Achievement Awards ka, ke mere husband ki ek dream thi ki unhone Pakistan ka flag dekhna tha Wembley Arena ki stage ke upar.
1: Kya baat.
0: That was his dream.
1: Zabardast.
0: And alhamdulillah Pakistan ki 75th birthday pe हमने ये ख्वाब पूरा किया जहाँ 12,000 पाकिस्तानीज केम टू सेलिब्रेट पाकिस्तान 75th बर्थडे
1: माशाल्लाह
0: एट वेम्बली अरेना. सो इन आवर 16 इयर्स दैट्स बीन आवर बिगेस्ट अचीवमेंट.
1: इट लुक्स लाइक
0: टू एक्चुअली सेलिब्रेट इन पाकिस्तान 75th बर्थडे व्हिच इज एन आइकॉनिक बर्थडे एट द आइकॉनिक वेम्बली अरेना विद पाकिस्तान's फ्लैग ऑन द स्टेज. दैट वाज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट.
1: दैट्स अमेजिंग मैन, दैट्स रियली अमेजिंग. बहुत जबरदस्त. और देखिए आपसे जब हम जुड़ते हैं इस तरह के लोग जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये रिकॉग्निशन मेरा ख्याल है आपको भी मिलनी चाहिए. और ये बड़ी छोटी सी एफर्ट है कि मैं आपको आपके साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ और आपके जरिए पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है कि आप एटलीस्ट लंदन में अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितनी जो है वो मेहनत आप कर रही हैं.
0: देखिए पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना आगे लेके आना वो बहुत जरूरी है
1: और ये जिम्मेदारी है हमारी.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम पाकिस्तानी कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है एंड यही मकसद है कि हम हर साल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट निकालते हैं एंड उसके अंदर हम जो टॉप 100 पाकिस्तानीज हैं उनको हाईलाइट करते हैं. उसकी बहुत मेहनत लगती है उस पब्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए बट वो एक हमारी एक अचीवमेंट है कि हर साल ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट हम निकालते हैं. उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियंस हूज हू अवार्ड्स. दिस टेक्स प्लेस एट द आइकॉनिक सवोई होटल. एक ही सवोई है पूरी दुनिया के अंदर तो वहाँ हर साल वहाँ होता है. तो 5 साल हो गया फॉर ब्रिटिश एशियन हूज हू अवार्ड्स. उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड्स. So we recognize people within the media industry. Unko recognize karte hain, unki achievements ko recognize karte hain, unki journey ko recognize karte hain. Uske alawa, aapko pata hai, yahan UK ke andar jo khane peene ka mahol hai, zabardast hai. Jo restaurant industry hai, hum ek award ceremony organize karte hain. It's called Asian Food and Restaurant Awards. And alhamdulillah se 11 saal ho gaya is award ceremony ko. This is our 11th year and the next one is happening on the 7th of December. So we recognize jo restaurateurs hai, wholesalers, cash and carries, caterers, venues, food brands. Aapko pata hai hamari Asian food brands itne hai UK ke andar. Right now. So ye both hamara ek successful award ceremony hoti hai on an annual basis. And puri food industry ko, drinks industry ko, puri industry ko hum recognize karte hai. And ye bhi central London mein hota hai. To inshallah this year will be happening. Uske ilawa hum kafi aur community ka kaam karte hai. Chand raat karte hai. Chand raat Eid exhibitions. Kafi influencers humare saath kaam karte hai. Kafi influencers ko hum waha recognize karte hain Chand Raat ke upar as well. And Chand Raat is a very community event. Eid aane wali hoti hai, logon ne roze rakhe hote hain,
1: to exactly,
0: both, you know,
1: excitement hoti hai. जी एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल से. नहीं मरिया, और जैसे कि आपने कितनी खूबसूरत बात किया कि ये बड़ा एक मैसेज है कि आपने हर एरिया को कवर किया है कि उसमें आपने किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं कराया कि भाई सिर्फ अवार्ड सेरेमनी जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक जो है मीडिया के लिए हो गई या किसी और चीज़ के लिए. आपने तकरीबन रेस्टोरेंट्स, फूड्स, हर डिपार्टमेंट को आपने कवर किया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जाहिर है ये सोच लेकर आना और फिर सोच को एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना, उसको अमली जामे पहनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मेरा ख्याल है कि हमारी आज की ऑडियंस को भी ये बहुत सुन के अच्छा लगा होगा कि कोई किसी कंट्री में बैठ कर, दुनिया के किसी कोने में बैठ कर जो है मुल्क के लिए कितना कुछ कर रहा है. हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ और आपके साथ का बहुत शुक्रिया. और बस ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज आप देना चाहें जो खवातीन लीडरशिप में आना चाहें या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कोई मैसेज हमारी यूथ को देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए.
0: देखें, कोई भी काम के लिए मेहनत लगती है. मेहनत के अलावा डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है और पैशन बहुत ज़रूरी है. तो मेरा बस यही है कि आप even if you don't make it first time round, keep trying. Aapko koshish jari rakhni chahiye. Because koshish ke saath aap apne jo results hai, wo, you know, success leke aayenge. And just keep going. And stay in your lane. Aapko pata hai ke community ke andar काफ़ी चीज़ें होती है कि there will be times where you feel let down. There will be times you will feel that other people are trying to pull you down. But no, stay in your lane, carry on with determination, and only have one goal, कि मैंने ये चीज़ succeed करनी है और मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, and that is your success.
1: Yeah,
0: and great. जो भी आपके competitors hai, jo aapke irgird jo bhi kar rahe hai, don't let it bother you, just keep going.
1: Yeah, and don't give up. बहुत अच्छा मैसेज था. और मारिया के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इतनी एफर्ट करिए, इनकी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि इनके भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा दुआ के लिए कहती हैं, तो उनके लिए आप प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इतने लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम करते हैं, उनको वैसे तो दुआ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब भी आप हाथ उठाएँ तो ज़रूर मारिया और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा. बहुत शुक्रिया मारिया आपके इस खूबसूरत साथ का, और बहुत अच्छा लगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह first.
0: اللہ حافظ، جزاک
1: اللہ خیر. بہت شکریہ. یہ تھی ماریا ہمارے ساتھ لندن سے، اور بہت خوبصورت اور زبردست ان کے ساتھ ڈسکشن رہی ہے ہماری. سو بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت ساتھ کا. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں، زبردست گیسٹ ہیں، اور بڑی خوبصورت ان کے ساتھ بھی زبردست گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ وتھ سلام میڈیا.
8: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
9: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
10: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential health care, and a safe home. Your sponsorship is not just support, it's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
11: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
12: It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.

0: Ji, welcome back program. A good mid-morning talk with Maryam Hashmi, live from Johannesburg. Salam media. Ji haan, aapko khush aamadeed kehte hain. Aur hamare saath hamari fourth guest maujood hain, jinke baare mein main aapko batana chahun. That guest is very important and very close to my heart because she is my colleague. And unka experience bahut zyada hai. Aur Pakistan ke different channels pe unhone kaam kiya, broadcast journalist hain. Aur unka journalism style jo hai, wo hame bahut pasand hai. Aur हम जो है उस स्टाइल के दीवाने, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आज हमारी जो है हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस प्रोग्राम को उर्दू में करने का मकसद हमारा यही है कि हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपनी ज़ुबान को भी प्रमोट कर सकें. तो हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से, आइए उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नीलम.
1: वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? और आपके तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको भी सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया नीलम, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. उम्मीद है आज की डिस्कशन जो है वो सबको बहुत पसंद आएगी. और लंदन का वेदर कैसा है? वैसे तो मैं सबसे पूछती हूँ आप क्या लेती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो विंटर है और बड़ा अच्छा अब तो वेदर स्टार्ट हो रहा है, समर की तरफ हम जा रहे हैं. तो आप सुनाइए कि लंदन के वेदर की कोई हाल अहवाल बताइए ज़रा हमें.
1: ये तो आपने जो है ना वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो दुख है लंदन के रहने वालों का, इंग्लैंड के रहने वालों का, उसके ऊपर बात शुरू कर दी है. 3 हीट वेव्स इस बार हम देख चुके हैं जो कि बड़ी एक्सट्रीम हीट वेव थी और लंदन में इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. मई, जून, जुलाई, अगस्त वो सब में हीट वेव रही है और अभी भी थंडरस्टॉर्म्स की जो वार्निंग है वो दी गई है, लेकिन उससे भी बजाय के फायदा और नुकसान ही होना, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई वेदर रहा, बहुत ज्यादा हॉट वेदर रहा है और आने वाले सालों में इंग्लैंड के लोगों को बड़ा इसके लिए लाइफ सीरियस किस्म की लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी. अगर मौसम का अहवाल आप जानना चाहती हैं तो वो इस वक्त अच्छा नहीं. अभी आजकल थोड़ी सी गर्मी कम है, लेकिन हमें बताया जा रहा है मेट ऑफिस की जानिब से कि एक और हीट वेव है जिसका भी सामना करना है हमें.
0: चले आपको स्ट्रांग बना रहे हैं वेदर की कंडीशंस जो है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में, लंदन के बारे में यही मशहूर था, यही फेमस है कि बहुत ठंड होती है वहाँ और जब ये स्टार्ट होती है तो जाती बड़ी मुश्किल से. चले इस विंटर को, और हम विंटर को इंजॉय करें, आप इस समर को इंजॉय करें, और बड़ा अच्छा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो है. अच्छा नीलम, बात करते हैं आज के टॉपिक की. बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है. बात मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिया कि हम लंदन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है. आप क्या समझती हैं सबसे पहले कि इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है, और फिर इसके रिस्क जो हैं वो क्या हैं, और कैसे जो है इस पे अटैक्स को जो है रोका जा सकता है, उस पे भी हम बाद में बात करें, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं?
1: सही. अच्छा मरियम, इस्लामोफोबिया जब हम कहते हैं ना कि ये बढ़ रहा है, तो आई थिंक हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. ये हमेशा से था, ये हमेशा से है. चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया, चूंकि अब वेबसाइट्स हैं, न्यूज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिपोर्ट हो जाते हैं इंसिडेंट. क्या आप बताएं जो 70s और 80s में यहाँ पे इमिग्रेंट फैमिलीज थी, आप सिर्फ अगर पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लें, वो आपको हॉरिफिक स्टोरीज नहीं बताती कि जब वो इस मुल्क में पहली बार आए थे क्या क्या उनको सहना पड़ा था. हलाल गोश्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, मसाजिद नहीं थी, किस तरह से जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको किस तरह से जो दूसरे बच्चों की जानिब से बुलिंग का सामना करना पड़ता था उनके रिलीजन की वजह से. तो ये सारे इंसिडेंट्स इवेंट्स हमेशा से रहे हैं. अब लोगों में अवेयरनेस ये आई है कि वो रिपोर्ट करते हैं. मैं आपको टेल मामा की ही अगर जो स्टैट्स हैं वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो टेल मामा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी हम ये बताएंगे सुनने वालों को कि वो सारे जो इस्लामोफोबिक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है, पुलिस को बताते हैं, लेकिन ये भी जो इदारा है ये तमाम इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करता है. उसकी जो स्टैट्स है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 131 इंसिडेंट्स हुए हैं एंटी मुस्लिम हेट के, हेट स्पीच के, इस्लामोफोबिक इवेंट्स कह सकते हैं. खवातीन को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, राह चलते, बसेस में, ट्रेन्स में, आपकी वर्क प्लेसेस पे हूटिंग की जा रही है, पार्किंग स्पॉट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स में. और ये 2023 में ओवरऑल 1000 जो इवेंट्स थे वो रिपोर्ट हुए थे, और यहाँ 2026 में सिर्फ 131 इंसिडेंट्स फर्स्ट 6 मंथ्स में रिपोर्ट हुए. लेकिन ये वो है, ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये हमेशा से था, लेकिन अब लोगों में कम अज कम ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर आप मुझे मेरे रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट करोगे तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा।
0: सही, आपने जैसे बात किया सोशल मीडिया की, आप क्या समझती हैं ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बढ़ाया है या इसको कम करने में इसका थोड़ा किरदार है?
1: अच्छा, सोशल मीडिया ने एक तरफ तो इसका इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत है और हमारे बरतानवी मुख्तलिफ क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, मुख्तलिफ रिलीजन और एथनिसिटीज के लोग यहाँ पर हैं, वो इसको कंडेम भी करते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है, पुलिस और हुकूमत भी ऐसे कवानीन लाने की कोशिश करती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जब टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो फिगर्स हैं, या रिफॉर्म यूके की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और उनकी अगर आप रैलीज देखें, वो जो राइट द किंगडम मार्च हुआ था आपको यकीनन याद होगा मई में, किस तरह से वहां पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी मुस्लिम हेट को के जज्बात को भड़काती है, तो वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से एक एक्शन होता है, तो फिर मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वहां से भी एक रिएक्शन आता है, तो सोशल मीडिया एक पूरे एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बना रहा है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाले जो नेबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कम्युनिटीज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था। अब चूंकि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आता था, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग न्यूज सुनते हैं, नहीं सुनते, अब सोशल मीडिया, फोन तो आपके हाथ में है ना,
0: बिल्कुल
1: मुझे फोन पे तो नजर आ ही जाएगा, मैं ना भी देखना चाहूँ तो एल्गोरिदम या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या कहीं ना कहीं वो न्यूज मेरे सामने आ जाएगी और वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। तो सोशल मीडिया का ये किरदार है बढ़ाने में नहीं, लेकिन हर चीज को दिखाने में और उसको मल्टीप्लाई करने में सोशल मीडिया का किरदार जरूर है।
0: सही है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगी कि इसको किस पॉजिटिव वे में यूज करें सोशल मीडिया को?
1: आई थिंक मरियम, सबसे पहले तो मैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, और मुस्लिम ही नहीं मैं ये कहूंगी कि नॉन मुस्लिम भी हैं, अगर हिंदूज हैं, सिख हैं, इवन वाइट एथनिसिटी के जो लोग हैं, किसी को भी, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन या उसकी रेस या एथनिसिटी की बुनियाद पर कभी भी किसी भी किस्म के तासुब का सामना नहीं करना चाहिए। इस हवाले से स्कूल्स में जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पे कभी कभी हम होता है कि साल में एक दिन मना लिया जी, हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मना लिया, या किसी और रिलीजन या एथनिसिटी के खिलाफ अगर कोई नफरत या तासुब है उसके खिलाफ, नहीं, इसको साल में एक दिन के लिए महदूद ना करें, कि कॉन्स्टेंटली स्कूलिंग और अवेयरनेस और बार बार बार बार लोगों को बताया जाए कि इट इज नॉट राइट कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रिलीजन की वजह से। बार बार इस हवाले से एड्स यूज किए जा सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है ऐसे कैंपेन्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जा सकता है, पब्लिक फिगर्स को यूज किया जाता है, अगर वो एक शैम्पू या एक परफ्यूम की बॉटल बेचने के लिए उस पैगाम को घर घर पहुंचा देते हैं, तो ये अच्छा पैगाम ही पहुंचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको देखें कि किस तरह से ज्यादा लोगों तक इसकी इस पैगाम को पहुंचाया जा सकता है।
0: आपने बहुत खूबसूरत बात की है नीलम, के गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें इकदाम होने चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, कि इन्फ्लुएंसर्स भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है, कि अगर कहीं ना कहीं हमारे पीछे या यू नो बैक साइड पे हमारी कहीं सोच है अनकॉन्शियसली कि ये है इस्लामोफोबिया, और बहुत सारे लोग जो वहां पहले मूव किए थे और अब उनको जिन चैलेंजेस का सामना है वो पिछले से कहीं या तो ज्यादा है या पीछे से बहुत कम है। जैसे आपने बात किया कि हलाल फूड बहुत कम अवेलेबल होता था, लेकिन माशाल्लाह अब वहाँ हर जगह स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, यंग बच्चे जो हैं, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, उन्हें तो पता भी नहीं है इन सारी चीज़ों का, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। आप क्या समझती हैं उसकी क्या मेन वजह है इस डिस्क्रिमिनेशन की, क्या वहाँ सिस्टम है, एजुकेशन है, या वहां पे आप फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व समझती हैं?
1: आई थिंक कोई भी टीचर्स तो ये बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप किसी को उसके कलर की वजह से बुली करें या उसके रिलीजन की वजह से, उसके फेथ की वजह से, ये घरों की ही तरबियत होती है जो स्कूल्स तक आ जाती है, और चाहे स्कूल जितनी भी पॉलिसीज बना लें या सख्ती कर लें, कहीं ना कहीं बच्चों की जो अपब्रिंगिंग घर में हो रही है, जो सोच उनके जहन में डाली जा रही है, वो एक दूसरे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको किसी ना किसी बात पे वो बुली कर देते हैं, और बच्चे जो इस एज में होते हैं अक्सर यही होता है कि अगर ये बुलिंग नहीं कर रहे होंगे वो किसी की कलर की वजह से कर रहे होंगे, किसी के बोलने के अंदाज की वजह से बुलिंग कर रहे होंगे, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ये स्कूलों में। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से ही कुछ बच्चे, अगर उनको सही उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही तो वो बाकी बच्चों के लिए किस किस तरह से ट्रॉमा का बायस बनते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा कोई बच्चा सामने आता है तो स्कूल्स को ये करना चाहिए कि वो उसको पॉइंट आउट करें, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स का जो है वो एहतमाम करें, उसके पेरेंट्स को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कि ऐसा रवैया एक डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे वो आप देख रहा है कि एक नेबरहुड में आपको मुस्लिम भी नजर आ रहा है, जियो फैमिली भी नजर आ रही है, आपको हिंदू भी सीख की, उस डाइवर्स कंट्री में वो 7 साल का, वो 11 साल का, वो 15 साल का बच्चा ऐसे क्यों सोच रहा है कि कोई उससे कमतर है, और उस मसले को एड्रेस किया जाए।
0: राइट, ज़बरदस्त। अच्छा नीलम, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, यूके की मैं बात करूँ, लंदन की मैं बात करूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक हम जोहान्सबर्ग की भी बात करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि ये जो रिस्पेक्ट है इसको मेनटेन रखने के लिए या इसको सिखाने के लिए, जिसमें रेसिज़म ना हो, जिसमें डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इन चीज़ों को मेनटेन रखने के लिए सबसे पहला इकदाम एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए?
1: एक तो ये कि हमें अपने आप को अकेले कुल नहीं समझना चाहिए। मैं इसको अगर कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही आखिर है, किसी का कोई भी स्टैंस है वो गलत है या सही है, अगर वो स्टैंस वो आप पे इम्पोज नहीं कर रहे, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने अकायद के साथ जी रही हूँ और मैं अपने नेबर को जो है वो फोर्स नहीं कर रही, उसके ऊपर अपना जो अकायद है वो इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं ये उनकी जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही ये है कि जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे तर्ज जिंदगी है मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो जब मैं हर किसी इंडिविजुअल को अपने आप से शुरू करना है, हो सकता है कुछ लोग आप उनको इज्जत दें तो उनको इज्जत रास भी ना आए, लेकिन वो आपका मसला नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: आप कम से कम अपनी जात की हद तक जो है वो लोगों को इज्जत दें अगर आपने इन डाइवर्स कम्युनिटीज में जीना है, वरना तो पाकिस्तान में आप रहते आपके मतलब 90% लोग आपके इर्द गिर्द मुस्लिम थे, बट अगर आप सिर्फ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं और ये जो एथनिसिटी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप अपनी अकायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरों के अकायद का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें। तो आई होप के वो भी एक ना एक दिन, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस्लाम का, आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, रमजान होता है वो उनको समझ होती है कि वो आपका रोजा है, वो बड़ा केयर करते हैं कि चले आप वर्किंग आवर्स तो यहाँ पे कम नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिगार्ड जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज में एक गुंजाइश और एक स्पेस पैदा हो रही है और मुस्लिम्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम का डर, इस्लाम से मुतालिक मिसकंसेप्शंस और जो के फैलाए गए हैं मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए से, तो वो डर जब आप उनका खत्म कर देंगे कि हम तो आप जैसे ही लोग हैं और हमारा तो रिलीजन हमें इंसानियत का एहतराम और लोगों का कहता है कि मतलब आपकी जुबान से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो इतना खूबसूरत रिलीजन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे, तो ये जब आप मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तो डेफिनेटली अब इंग्लैंड में काफी स्पेस पैदा हो भी रही है इस्लाम के हवाले से।
0: तो ये जो हमारा स्लोगन है हमारा, जियो और जीने दो, मेरा ख्याल है इस पे जो है हमें अपनी ज़िंदगी को फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को लेकर चलना चाहिए कि खुद भी जिए, खुद भी अच्छा इखलाक जो है आप रखें, अच्छी बात रखें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्तवार रखें। नीलम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, टाइम हो जाता है एक वे बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
3: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
4: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Safi Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
5: Right now in some of the most devastated parts of our world, places close to many of our hearts, Doctors Without Borders is delivering emergency medical care where no one else will. Your donation gives a child surgery, a family clean water, a community a fighting chance against disease. This is an opportunity to make your giving count where it's needed most. Visit msf.org.za/sadaqah, that's SADAQAH, and donate today. Doctors Without Borders, we go there.
3: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
0: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है ये जो फोबिया है इसको ख़त्म किया जा सकता है एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है अच्छा नीलम आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है अब थोड़ी आपकी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए ज़रा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया जर्नलिज्म में आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफ़िकल्ट है डिफरेंट है इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
1: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज़्यादा कमर्शलाइज में कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है एक खबर को रिपोर्ट करना एक इशू को उठाना किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना ये जर्नलिज्म है लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा ये है कि वो इशूज को उठाते हैं लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक वो कहीं उन ऑब्वियसली उनके पास वी कांट ब्लेम देम उनके पास वो एजुकेशन नहीं है तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं वो अब एक जर्नलिस्ट बन गया तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है जो नहीं है जर्नलिस्ट मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जांपल दूंगी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे उसको स्प्रेड करना उसके ऊपर बात करना पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी वो जो लोगों के इशूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी वो बहुत कम हो गई है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज जैसा वहां से आया है. ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए. और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल कोई भी न्यूज वेबसाइट किसी भी इदारे या किसी भी हम मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता, वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में स्टेट मीडिया. तो वो स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है सारे न्यूज को. तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा. यहाँ तक जहां तक बात है बर्तानिया की, बर्तानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है. इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता,
0: सही.
1: वो उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है. तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है. बाकी बर्तानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही हैं बहुत अच्छी हैं. चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. BBC बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में. यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को उतना नहीं दिया जाता. तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बर्तानिया में.
0: सही, और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म ज़रूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप ज़रूर करें, और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को ज़रा तरीके से मेंटेन करें. अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज़ है समटाइम उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है. तो ज़ाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं. तो उस पर जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही अब अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को.
1: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा. लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो जो उम्मीद बहार है
0: जी.
1: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं. पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड्स हैं अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे. तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो, उनको निकाल के सामने लाएं तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी. तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहां बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के लिए भी अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है. तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाया अपने नाज़रीन.
0: کیا بات ہے بہت شکریہ نیلم آپ کے ساتھ بہت زبردست گفتگو رہی اور بڑا اچھا آپ کا پیغام جو ہے وہ ہمیں ملا کہ جہاں آپ نیگیٹو نیوز پہ بہت دھیان دیتے ہیں وہاں تقریباً اس کنٹری کی پازیٹیو ویوز جو ہے پازیٹیو نیوز جو ہے وہ بھی آپ ضرور نکالیں ان کے لیجنڈس کو آپ یاد رکھیں ان کی محنت اور کوششوں کو یاد رکھیں جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کی ہیں تو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی جیسے کہ ہم یہاں جوہانسبرگ سے اپنے ملک کو اپنی زبان کو پروموٹ کر سکیں وہ ہم نے کیا اب آپ کی کوشش کی باری آپ ضرور کیجیے گا بہت شکریہ نیلم اپنا بہت خیال رکھیے گا بہت دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور کامیابی کرے بہت شکریہ اللہ حافظ جی یہ تھی ہمارے ساتھ نیلم اسلم اور نیلم اسلم نے ہمیں بہت زبردست جو ہے میسج دیا کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے ملک کو اپنے اس کے اچھے امیج کو برقرار رکھ سکتے ہیں نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ آپ جہاں رہ رہے ہیں اس ملک کی بھی اچھی نیوز اچھی نعمتوں کو جو ہے آپ یاد رکھیں تاکہ جو ہے آپ کو پل پل یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے اس کے ایک پانی کی ایک بوند سے لے کر اس کی چلتی سانسوں تک جو ہے وہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہی ہمارا آج کا میسج تھا یہی ہمارا آج کا مقصد تھا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا اور اپنا جو ہے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسے جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں بہتری لاتے ہیں کیا اگر پازیٹیو بات ہے جو اگر آپ کو کوئی نگیٹیو بات پریشان کر رہی ہے تو اس کو پازیٹیوٹی کی طرف آپ کیسے لے کر آتے ہیں کیا اس کے میتھس ہیں اور کیا آپ ان سے کیسے جو ہے آپ ان سے مل جو نبرد آزما ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے آپ کیسے کوپ کرتے ہیں یہ تمام فیکٹرز ہیں یہ تمام باتیں ہیں جو ایز اے پرسنالٹی ہمیں سیکھنی چاہیے سمجھنی چاہیے تاکہ ہم خود بھی سمجھیں خود بھی ایک پازیٹیو میسج سوسائٹی کے لیے ملک کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پر وہ ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے ہم وہ لا سکتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جو تھا اب اختتام کو پہنچتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ میں جیسے پہلے بتا چکی ہوں یہی تھا کہ ہم ایک پازیٹیو میسج جو ہے پوری دنیا کو دے سکیں اور اپنا جو ہے ایک راہ دیا جو ہے وہ ہم جلا سکیں تو امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے چینل کو جو ہے وہ ضرور فالو کیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے مریم ہاشمی اور اس کی فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اپنا بہت دھیان رکھیے گا اللہ حافظ

0: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
1: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
2: Gee, welcome back, program. A good mid-morning talk with Maryam Hashmi, live from Johannesburg. Salam Media. Ji haan, aapko khush aamadeed kehte hain. Aur hamare saath hamari fourth guest maujood hain, jinke baare mein main aapko batana chahu. That guest is very important and very close to my heart because she is my colleague. And unka experience bahut zyada hai. Aur Pakistan ke different channels pe unhone kaam kiya, broadcast journalist hain. Aur unka journalism style jo hai, wo hame bahut pasand hai. Aur हम जो है उस स्टाइल के दीवाने, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आज हमारी जो है हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इस प्रोग्राम को उर्दू में करने का मकसद हमारा यही है कि हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपनी जुबान को भी प्रमोट कर सकें. तो हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से, आइए उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नीलम.
3: वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप और आपके तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको भी सलाम.
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नीलम, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. उम्मीद है आज की डिस्कशन जो है वो सबको बहुत पसंद आएगी. और लंदन का वेदर कैसा है? वैसे तो मैं सबसे पूछती हूँ आप क्या लेती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो विंटर है और बड़ा अच्छा अब तो वेदर स्टार्ट हो रहा है, समर की तरफ हम जा रहे हैं. तो आप सुनाइए कि लंदन के वेदर की कोई हाल अहवाल बताइए जरा हमें.
3: ये तो आपने जो है ना वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो दुख है लंदन के रहने वालों का, इंग्लैंड के रहने वालों का, उसके ऊपर बात शुरू कर दी है. 3 हीट वेव्स इस बार हम देख चुके हैं जो कि बड़ी एक्सट्रीम हीट वेव थी और लंदन में इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. मई, जून, जुलाई, अगस्त वो सब में हीट वेव रही है और अभी भी थंडरस्टॉर्म्स की जो वार्निंग है वो दी गई है, लेकिन उससे भी बजाय के फायदा और नुकसान ही होना, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई वेदर रहा, बहुत ज्यादा हॉट वेदर रहा है और आने वाले सालों में इंग्लैंड के लोग

0: सीरियस किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर मौसम का हवाला आप जानना चाहती हैं तो वो इस वक्त अच्छा नहीं। अभी आजकल थोड़ी सी गर्मी कम है लेकिन हमें बताया जा रहा है मेट ऑफिस की जानिब से कि एक और हीट वेव है जिसका अभी सामना करना है हमें।
1: चलिए आपको स्ट्रांग बना रहे हैं वेदर की कंडीशंस जो है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में, लंदन के बारे में यही मशहूर था, यही फेमस है कि बहुत ठंड होती है वहाँ और जब ये स्टार्ट होती है तो जाती बड़ी मुश्किल से है। चलिए इस विंटर को और हम विंटर को इन्जॉय करें, आप इस समर को इन्जॉय करें और बड़ा अच्छा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो है। अच्छा नीलम, बात करते हैं आज के टॉपिक की, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। बात मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिया कि हम लंदन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है। आप क्या समझती हैं सबसे पहले कि इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है और फिर इसके रिस्क जो हैं वो क्या हैं और कैसे जो है इस पे अटैक्स को जो है रोका जा सकता है, उस पर भी हम बाद में बात करें, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं?
0: सही। अच्छा मरियम, इस्लामोफोबिया जब हम कहते हैं ना कि ये बढ़ रहा है तो आई थिंक हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये हमेशा से था, ये हमेशा से है, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, क्योंकि अब वेबसाइट्स हैं, न्यूज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो रिपोर्ट हो जाते हैं इंसिडेंट। क्या आप बताएं जो 70s और 80s में यहाँ पे इमिग्रेंट फैमिलीज थी, आप सिर्फ अगर पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लें, वो आपको हॉरिफिक स्टोरीज नहीं बताती कि जब वो इस मुल्क में पहली बार आए थे क्या क्या उनको सहना पड़ा था। हलाल गोश्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, मस्जिद नहीं थी, किस तरह से जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको किस तरह से जो दूसरे बच्चों की जानिब से बुलिंग का सामना करना पड़ता था उनके रिलीजन की वजह से। तो ये सारे इंसिडेंट्स इवेंट्स हमेशा से रहे हैं, अब लोगों में अवेयरनेस ये आई है कि वो रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको टेल मामा की ही अगर जो स्टैट्स हैं वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो टेल मामा हमारे जो देखने वाले उनको भी हम ये बताएंगे सुनने वालों को कि वो सारे जो इस्लामोफोबिक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है पुलिस को बताते हैं, लेकिन ये भी जो इदारा है ये तमाम इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करता है। उसकी जो स्टैट्स है फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ 2026 यू विल बी सरप्राइज टू नो के 131 इंसिडेंट्स हुए हैं एंटी मुस्लिम हेट के, हेट स्पीच के, इस्लामोफोबिक इवेंट्स कह सकते हैं। खवातीन को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, राह चलते, बसेस में, ट्रेन्स में, आपकी वर्क प्लेसेस पे हूटिंग की जा रही है, पार्किंग स्पॉट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स में, और ये 2023 में ओवरऑल 1000 जो इवेंट्स थे वो रिपोर्ट हुए थे, और यहाँ 2026 में सिर्फ 131 इंसिडेंट्स फर्स्ट सिक्स मंथ्स में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ये वो है, ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये हमेशा से था, लेकिन अब लोगों में कम अज़ कम ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर आप मुझे मेरे रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट करोगे तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा।
1: सही, आपने जैसे बात किया सोशल मीडिया की, आप क्या समझती हैं ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बढ़ाया है या इसको कम करने में इसका थोड़ा किरदार है?
0: अच्छा सोशल मीडिया ने एक तरफ तो इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत है और हमारे बतानी मुख्तलिफ क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, मुख्तलिफ रिलीजन और एथनिसिटीज के लोग यहाँ पर हैं, वो इसको कंडेम भी करते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है, पुलिस और हुकूमत भी ऐसे कवानीन लाने की कोशिश करती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जब टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो फिगर्स हैं या रिफॉर्म यूके की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उनकी अगर आप रैलीज देखें, वो यूनाइट द किंगडम मार्च हुआ था आपको यकीनन याद होगा मई में, किस तरह से वहां पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी मुस्लिम हेट को के जज्बात को भड़काती है, तो वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से एक एक्शन होता है तो फिर मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वहां से भी एक रिएक्शन आता है। तो सोशल मीडिया एक पूरे एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बना रहा है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाले जो नेबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम है वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कम्युनिटीज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था। अब चूंकि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होता था, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग न्यूज सुनते हैं, नहीं सुनते, अब सोशल मीडिया, फोन तो आपके हाथ में है ना,
1: बिल्कुल
0: मुझे फोन पे तो नजर आ ही जाएगा, मैं ना भी देखना चाहूँ तो एल्गोरिदम या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या कहीं ना कहीं वो न्यूज मेरे सामने आ जाएगी और वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। तो सोशल मीडिया का ये किरदार है बढ़ाने में नहीं लेकिन हर चीज को दिखाने में और उसको मल्टीप्लाई करने में सोशल मीडिया का किरदार जरूर है।
1: सही है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगी कि इसको किस पॉजिटिव वे में यूज करें सोशल मीडिया को?
0: आई थिंक मरियम, सबसे पहले तो मैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, अब मुस्लिम ही नहीं

0: मैं ये कहूंगी कि नॉन मुस्लिम भी हैं, अगर हिंदूज हैं, सिख हैं, इवन व्हाइट एथनिसिटी के जो लोग हैं, किसी को भी, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन या उसकी रेस या एथनिसिटी की बुनियाद पर कभी भी किसी भी किस्म के तासुब का सामना नहीं करना चाहिए। और इस
1: बिल्कुल
0: हवाले से स्कूल्स में जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पे कभी कभी हम होता है कि साल में एक दिन मना लिया जी, हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मना लिया, या किसी और रिलीजन या एथनिसिटी के खिलाफ अगर कोई नफरत या तासुब है उसके खिलाफ, नहीं, इसको साल में एक दिन के लिए महदूद ना करें। कि कॉन्स्टेंटली स्कूलिंग और अवेयरनेस और बार बार बार बार लोगों को बताया जाए कि इट इज नॉट राइट कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रिलीजन की वजह से। बार बार इस हवाले से एड्स यूज किए जा सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है, ऐसी कैंपेन्स को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जा सकता है, पब्लिक फिगर्स को यूज किया जाता है। अगर वो एक शैम्पू या एक परफ्यूम की बॉटल बेचने के लिए उस पैगाम को घर घर पहुंचा देते हैं, तो ये अच्छा पैगाम भी पहुंचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको देखें कि किस तरह से ज्यादा लोगों तक इसकी इस पैगाम को पहुंचाया जा
1: ये
0: सकता
1: आपने
0: है।
1: बहुत खूबसूरत बात की है नीलम, कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज़ें इकदाम होने चाहिए, लेकिन ये है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, कि इन्फ्लुएंसर्स भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है, कि अगर कहीं ना कहीं हमारे पीछे या बैक साइड पर हमारी कहीं सोच है अनकॉन्शियसली कि ये है इस्लामोफोबिया, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पहले मूव किए थे और अब उनको जिन चैलेंजेस का सामना है वो पिछले से कहीं या तो ज़्यादा है या पीछे से बहुत कम है। जैसे आपने बात किया कि हलाल फूड बहुत कम अवेलेबल होता था, लेकिन माशाल्लाह अब वहाँ हर जगह स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, यंग बच्चे जो हैं, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, उन्हें तो पता भी नहीं है इन सारी चीज़ों का, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। आप क्या समझती हैं उसकी क्या मेन वजह है इस डिस्क्रिमिनेशन की? क्या वहाँ का सिस्टम है, एजुकेशन है, या वहाँ पर आप फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व समझती हैं?
0: आई थिंक कोई भी टीचर्स तो ये बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप किसी को उसके कलर की वजह से बुली करें या उसके रिलीजन की वजह से, उसके फेथ की वजह से। ये घरों की ही तरबियत होती है जो स्कूल्स तक आ जाती है, और चाहे स्कूल्स जितनी भी पॉलिसीज बना लें या सख्ती कर लें, कहीं ना कहीं बच्चों की जो अपब्रिंगिंग घर में हो रही है, जो सोच उनके जहन में डाली जा रही है, वो एक दूसरे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको किसी ना किसी बात पे वो बुली कर देते हैं। और बच्चे जो इस एज में होते हैं, अक्सर यही होता है कि अगर ये बुलिंग नहीं कर रहे होंगे, वो किसी के कलर की वजह से कर रहे होंगे, किसी के बोलने के अंदाज की वजह से बुलिंग कर रहे होंगे, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ये स्कूलों में। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से ही कुछ बच्चे, अगर उनको सही उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, तो वो बाकी बच्चों के लिए किस किस तरह से ट्रॉमा का बायस बनते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा कोई बच्चा सामने आता है, तो स्कूल्स को ये करना चाहिए कि वो उसको पॉइंट आउट करें, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स का जो है वो एहतमाम करें, उसके पेरेंट्स को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कि ऐसा रवैया एक डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे वो आप देख रहा है कि एक नेबरहुड में आपको मुस्लिम भी नजर आ रहा है, जियो फैमिली भी नजर आ रही है, आपको हिंदू भी, सिख भी, उस डाइवर्स कंट्री में वो 7 साल का, वो 11 साल का, वो 15 साल का बच्चा ऐसे क्यों सोच रहा है कि कोई उससे कमतर है, और उस मसले को एड्रेस किया जाए।
1: जबरदस्त। अच्छा नीलम, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, यूके की मैं बात करूँ, लंदन की मैं बात करूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक हम जोहान्सबर्ग की भी बात करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि ये जो रिस्पेक्ट है इसको मेनटेन रखने के लिए या इसको सिखाने के लिए, जिसमें रेसिज्म ना हो, जिसमें डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इन चीज़ों को मेनटेन रखने के लिए सबसे पहला इकदाम एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए?
0: एक तो ये कि हमें अपने आप को अकेले कुल नहीं समझना चाहिए।
1: जी
0: मैं इसको अगर कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही आखिर है, किसी का कोई भी स्टैंड है वो गलत है या सही है, अगर वो स्टैंड वो आप पे इम्पोज नहीं कर रहे, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने अकायद के साथ जी रही हूँ और मैं अपने नेबर को जो है वो फोर्स नहीं कर रही, उसके ऊपर अपना जो अकायद है वो इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं ये उनकी जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही यही है कि जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे तर्ज़े ज़िंदगी है मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो जब मैं हर किसी इंडिविजुअल को अपने आप से शुरू करना है, हो सकता है कुछ लोग आप उनको इज्जत दें तो उनको इज्जत रास भी ना आए, लेकिन वो आपका मसला नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आप कम से कम अपनी जात की हद तक जो है वो लोगों को इज्जत दें अगर आपने इन डाइवर्स कम्युनिटीज में जीना है, वरना तो पाकिस्तान में आप रहते आपके मतलब 90% लोग आपके इर्द गिर्द मुस्लिम थे। बट अगर आप सिर्फ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं और ये जो एथनिसिटी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप अपनी अकायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरों के अकायद का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें। तो आई होप के वो भी एक ना एकदम, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस्लाम का, आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, रमजान होता है वो उनको समझ होती है कि वो आपका रोजा है, वो बड़ा केयर करते हैं कि चले आप वर्किंग आवर्स तो यहाँ पे कम नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिगार्ड जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज में एक गुंजाइश और एक स्पेस पैदा हो रही है और मुस्लिम्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लाम का डर, इस्लाम से मुतालिक मिसकंसेप्शंस और जो कि फैलाए गए हैं मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए से, तो वो डर जब आप उनका खत्म कर देंगे कि हम तो आप जैसे ही लोग हैं और हमारा तो रिलीजन हमें इंसानियत का एहतराम और लोगों का कहता है कि मतलब आपकी जबान से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो इतना खूबसूरत रिलीजन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे, तो ये जब आप मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तो डेफिनेटली अब इंग्लैंड में काफी स्पेस पैदा हो भी रही है इस्लाम के हवाले से।
1: तो ये जो हमारा स्लोगन है हमारा, जियो और जीने दो, मेरा ख्याल है इस पे जो है हमें अपनी जिंदगी को फोकस करना चाहिए, अपनी जिंदगियों को लेकर चलना चाहिए कि खुद भी जिए, खुद भी अच्छा इखलाक जो है आप रखें, अच्छी बात रखें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्तवार रखें। नीलम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, टाइम हो जाता है एक वे बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: वी वर्क हार्ड टू बिल्ड आवर होम्स, बिजनेसेस एंड फ्यूचर्स। Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity, and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims, and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent, and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity, and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
3: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
4: Across Sudan, starvation is tightening its grip. With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine-level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
5: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Safi Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
4: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है ये जो फोबिया है इसको खत्म किया जा सकता है एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है अच्छा नीलम आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है अब थोड़ी आपकी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए जरा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया जर्नलिज्म में आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट है डिफरेंट है इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
0: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा कमर्शलाइज में कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है एक खबर को रिपोर्ट करना एक इशू को उठाना किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना ये जर्नलिज्म है लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा ये है कि वो इश्यूज को उठाते लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास वी कांट ब्लेम देम उनके पास वो एजुकेशन नहीं है तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं वो अब एक जर्नलिस्ट बन गया तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है जो नहीं है जर्नलिस्ट मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जांपल दूंगी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे उसको स्प्रेड करना उसके ऊपर बात करना पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी वो जो लोगों के इश्यूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी वो बहुत कम हो गई है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज जैसा वहां से आया है ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल कोई भी न्यूज वेबसाइट किसी भी इदारे या किसी भी हम मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में स्टेट मीडिया तो right. स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है सारे नहीं होते तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा यहाँ तक जहां तक बात है बरतानिया की बरतानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी दुनिया भर में यूज होती है कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता.
1: सही.
0: वो उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है. तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है. बाकी बरतानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं. बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है. बहुत अच्छा काम हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही हैं बहुत अच्छी हैं. चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बीबीसी बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में. यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है. या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को उतना नहीं दिया जाता. तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बरतानिया में.
1: सही. और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म जरूर होना चाहिए. अपनी कवरेज जो है आप जरूर करें और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है उस प्रेशर को जरा तरीके से मेंटेन करें. अच्छा नीलम जाते जाते बस यही आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज है सम टाइम उनको बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है. तो जाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं. तो उस पे जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही आप अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को.
0: मैं इस पे ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है. उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा. लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो जो उम्मीद बहार है
1: जी.
0: वो रहे. उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन फिर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं. पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एबी भी पैदा हुए थे. पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे. पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं. पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं. और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड्स हैं अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे. तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है. हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो.
1: सही.
0: उनको निकाल के सामने लाएं तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी. तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहां बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं ना खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है. तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के ये भी अपने लोगों के लिए भी इनकी वजह से इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा. तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाए अपने नाज़रीन.
1: क्या बात है. बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत जबरदस्त गुफ्तगु रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहां आप नेगेटिव न्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं वहां तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज जो है पॉजिटिव न्यूज जो है वो भी आप जरूर निकालें. उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है. तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया. अब आपकी कोशिश की बारी, आप जरूर कीजिएगा. बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां और कामयाबी करे. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.
6: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Albayt Lodge. Your true home away from home. Albayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Albayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
7: Dad, these Frimax chips are so tasty.
8: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, And that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
9: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
10: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
11: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
12: Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho. Isi shikasta o basta zaba mein zahir ho. Main surkhuru nazar aaun kalam ho ke sakoot. Teri ata mere namo nishan mein zahir ho. Assalamu alaikum. This is Maryam Hashmi with program Mid Morning Talk. Ji ha, aaj ka ye khususi Urdu special transmission jo hai, wo Salam Media ke zariye aap tak pahunchaya ja raha hai aur jiska main maqsad yahi hai ki hum na sirf mukhtalif zubanon ko promote kar saken, usmein baat kar saken, balki hum logon ko jo is community se related hain, jo is zuban se wabasta hain, unko jo hai ek dusre ke kareeb la saken. Jaise hum baat kar rahe hain ki we are live from Johannesburg, and Johannesburg ek aisa diverse city hai South Africa ka jisme mashallah bahut sare cultural cultures jo hain wo rehte hain aur different zubane hain, different languages hain, aur un languages ke sath kya hota hai ki hum communicate karte hain. To har zuban khoobsurat hai, har language jo hai wo behtareen hai. Aur koshish hamari aaj ke is khususi special Urdu transmission ki yahi hai ki hum aisi khawateen ko, aise logon ko jo hai wo connect kar sake apne is program ke zariye jo Urdu zuban se mohabbat rakhte hain, wabastgi rakhte hain, dil se jo hai wo is zuban se jude hain, is culture se jude hain, aur apni bahut sari aisi khususiyat hain jo ki apne is program ke zariye wo hum logon tak pahunchana chahte hain, apna koi message jo hai wo is program ke zariye dena chahte hain. Ji, hamare sath stay tuned rahiyega 11 se lekar 1 baje tak, yani ki 11 to 1 pm main aapke sath rahungi Mid Morning Talk mein. Aap hame join kar sakte hain, humse baat kar sakte hain, hame bata sakte hain aap kya samajhte hain, duniya ko koi paigham aap acha dena chahte hain, aman ka paigham dena chahte hain, aap is program ke zariye de sakte hain. Ji, program ki hum aaj shuruaat karte hain aur iska format simply main aapko batati chalu ki humne aaj is program mein different logon ko connect kiya hai aur different countries se connect kiya hai. Ji, mostly hamari jo guest hai aaj ke program ki wo hain UK se belong karti hain. Ji, mostly London se belong karti hain. Ek hamare paas jo guest hain wo hamare Pakistan se belong karte hain. To humne socha ki different cultures jo hain, different countries jo hain, unko sabko connect kiya jaye aur aap tak unki awaaz jo hai pahunchayi jaye. Shuruaat karte hain apne program ki. Aaj hamare saath maujood hain hamari ek bahut pyari guest hain, aur guest ki tareef main aapko kya batati chalun, kyunki sometime hota hi hai ki aap bahut skilled hote hain بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور آپ میں بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو آزما کر اس کو کام میں لا کر آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا عثمان پاکستان لاہور سے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھیں بہت اچھی پینٹر تھیں بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا بہت ایوارڈز جو ہیں انہیں ملے ہیں اور جس نے ان کی مطلب کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے گورنمنٹ لیول پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے تو ان کی آج کارکردگی کی کہانی ہم ان سے سنیں گے کیونکہ اپنے انہوں نے اس پیشن کو آرٹ کے پیشن کو انہوں نے بزنس میں کنورٹ کیا ہے یہ بڑا ایک نیو تھنگ ہے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے پیشن کو اپنے بزنس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو آج کی سٹوری ہے اٹس آل اونلی بیکاز آف دیٹ کہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کا پیشن ہے آپ کا آرٹ ہے اس میں کوئی پیشن اور اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کرنا ہے ایز اے کیفے جی ہاں انہوں نے کیفے بنایا غنی آرٹس کے نام سے اور اس کیفے کو انہوں نے جو ہے بہت رنگ دیا ہے بڑا خوبصورت پینٹ کے رنگوں کی طرح کا انہوں نے اس کو رنگ دیا ہے اور کس طرح کی یہ سوچ ان کے ساتھ آئی انہوں نے کیسے اس چیز کو اسٹارٹ کیا کیا کیا مشکلات آئیں یہ سب ہم ان سے ڈسکس کریں گے جی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ثنا عثمان کو السلام علیکم ثنا
13: وعلیکم السلام مریم کیسی
1: ہیں آپ جی ثنا میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے پاکستان کے ویدر کی کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ جی ویدر جو ہے آپ کو پتا ہے جوہانسبرگ کا ویدر بہت خوبصورت ہے آج تو بہت اچھا جو ہے ماشاء اللہ سنی ڈے ہے تو پاکستان میں سچویشن کیسی جا رہی ہے ویدر کی
13: پاکستان میں اس ٹائم مونسون چل رہا ہے اگر ویدر کو دیکھ کے اکارڈنگ بات کی جائے تو پاکستان میں تو خیر ملا جلا موسم چل رہا ہے گرمی بھی ہے اور خوشگواریت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور
1: یہی بڑی خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی کہ کتنے خوبصورت جو ہے انہوں نے جو ہے یہ رنگ اور موسم جو ہے وہ بنائے ہیں بات ہو رہی ہے رنگوں کی تو ثنا بتائیے گا کہ آپ کا جو پیشن تھا آرٹ میں سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ آرٹ میں کیسے ہوا پھر اس نے آرٹ کو آپ نے ایک آرٹ کیفے میں کیسے کنورٹ کیا ذرا بتائیے گا ہمیں
13: بیسکلی میں خود ایک آرٹسٹ ہوں جیسے کہ آپ پہلے ہی انٹرو دے چکی ہیں کہ میں جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بائی بون آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنا کریئر بنا لے لیکن اس کی جو اندر کا ایک تخلیقی انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے تو اسی طرح میں بھی آرٹسٹ ہی تھی شروع سے آرٹسٹ تھی بچپن سے آرٹسٹ تھی بہت زیادہ پینٹنگ بنائی ہینڈ ورک بہت زیادہ کیے اور ماسٹرز میں نے پھر ہسٹری میں کیا لیکن بات پھر وہیں ختم ہو گئی کہ جو آپ کیا اندر کا انسان ہوتا ہے بیسکلی وہی آپ کا اثر ہوتا ہے اور میرے اندر سے میں آرٹسٹ تھی تو پھر میں نے پینٹنگ اسی کو دیکھ کے اس کو پینٹنگ کو شوق کے ساتھ ساتھ پروفیشن بھی کی طرف پھر میں لے آئی
1: رائٹ سو یہ جو آپ کا پروفیشن ہے جیسے میں آپ کے پیچھے دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ بہت کریٹو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ نے کریٹ کیا ہے تو اس کیفے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور آپ نے کیا سوچا کہ آپ کے اس آرٹ کو کس طرح سے لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جائے کچھ اور بھی کر سکتے تھے آپ
13: بیسکلی میرا جو غنیا آرٹ کا جو ایک آئیڈیا تھا میں اپنا ایک ایسا آؤٹ لیٹ بنانا چاہ رہی تھی جہاں پہ میں اپنا آرٹ کو ڈسپلے کر سکوں کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ایک آرٹ کر رہی ہوں میں ایک ہنر میرے اندر ہے میں اپنی پرنٹنگ بنا رہی ہوں تو مجھے اس کو پرائیویٹلی کیسے شو کیس کرنا تو پھر جب میں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ بنانے کا سوچا جہاں پہ اپنا آرٹ تخلیق ساری دکھا سکتی ہوں وہاں پہ چیزوں کو پھر جب میں وہاں کھڑی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں یار آرٹ تو کھانے اور پینے کے بغیر تو کافی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہم بیٹھیں گپ شپ کریں چائے کافی پئیں اور ساتھ اپنے آرٹ کو بھی انجوائے کریں
1: اچھا سر یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ جو آرٹ کا اور کافی کا بڑا جو ہے وہ بالکل گہرا تعلق ہے آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے میں نے آپ کی بات کیا کہ آپ نے آرٹ کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے کیفے کا ہی انتخاب کیا تو آپ بھی ایسی کچھ کسی عادت ہے آپ کو کافی اینڈ آرٹ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں
13: بالکل ایسے ہی ہے جو آرٹسٹ ہے وہ پینے چائے اور کافی کا تو بہت شوقین ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں ساتھ آپ ایک کافی کا سپ لیتے ہیں ساتھ آپ ایک رنگ لیتے ہیں آپ ان چیزوں کو ملا کے ایک نئی کریشن بناتے ہیں کریٹیوٹی آپ کے اندر سے ابھر کے آتی ہے اور کافی آپ جب تک ایک انوائرمنٹ کو انجوائمنٹ نہیں بنائیں گے نا جب تک کیونکہ کافی اور چائے جو ہے ٹی جو ہے اور وہ ہے آپ کی سیٹسفیکشن ठीक है, आप उसको एंजॉय करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, आपके अंदर आपको रंग समझ आएंगे, आपको क्रिएशन समझ आएगी। तो इन दोनों के इंतजार को मिला के मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया एक्सपीरियंस किया जाए, ताकि लोग कॉफी भी इंजॉय करें और अपना आर्ट, मेरे आर्ट को या अपने आर्ट को जो वो बनाते बनाती हैं यहाँ बैठ के, उसको भी वो अप्रिशिएट भी करें और उसको क्रिएट भी करें।
1: सही। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल होता है आइडियाज को जो है उसको अमली जामिया पहनाना, उसको हकीकत में लाना। तो आपने माशाल्लाह अपने इस आर्ट को हकीकत में लेकर आई, बड़े चैलेंजेस आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको लगी और जो आप समझती हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।
13: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपकी आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट। कि ये सारी चीजें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, तो इन सारी चीजों को साथ लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि आइडिया तो आपके पास है, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप अमली शक्ल देने के लिए, एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की जरूरत है।
1: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
14: टुनाइट अ चाइल्ड इन अ शैक विल ट्राई टू स्लीप थ्रू द कोल्ड, नो हीटिंग, नो इंसुलेशन, जस्ट थिन वॉल्स एंड अ बाइटिंग कोल्ड। African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
15: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
16: Valleys Motor Spares. We supply motor spares and accessories for all makes and models of motor cars, LDVs, buckies, trucks, and earth-moving equipment. We deliver on time, every time. Please contact us via WhatsApp on 014-592-0925 or call 014-592-0925 or visit 28 Zenderling Street, Rustenburg. Remember the name, Valleys Motor Spares.
17: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
18: When disaster strikes, families lose everything in an instant. Homes destroyed, communities displaced. Hope fades into uncertainty. Our Global Emergency Fund ensures we respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
19: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी, वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी। हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान, और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिजनेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया। अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज़ को करने में, और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं, अपने शौक से भी और अपने काम से भी। तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, इससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
13: देखिए बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको. आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती. मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है. हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है. मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़े बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात कि आपके अंदर का हौसला हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है और कि नहीं हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पांव पे खड़े होके अपने बिजनेस को अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना. तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
1: सही. तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है. अच्छा मैं चाहूंगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसेस के बारे में भी लोगों को बताएं जरा. आप थोड़ा सा जरा अपने कैफे की तरफ जरा रुख कीजिए, मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसेस के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थॉट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीजें आप जरूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाजा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियां हैं अगर आप कर सकें.
13: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है.
1: राइट.
13: दिस इज द वॉल हैंगिंग. ठीक है, इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है. फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है. देखिए इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है. तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे. यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस. ठीक है, ये टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये वुडन ट्रेज हैं, वॉल हैंगिंग है. इसमें ये है कि मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि खवातीन को शौक होता है घरों को सजाने का. ठीक है, वो अपने घर को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भी होता है कि उनको अपनी पुरानी और अपनी जहेज की चीजों से, अपनी अम्मियों की चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है. टाइम बाय टाइम सम टाइम के बाद चीजें अपनी रौनक अपनी चमक खो बैठती हैं. तो जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर आपने अपने खवातीन जो है या कोई भी आप अपने आर्ट को वेस्ट मत करें, अपने सामान को वेस्ट मत करें. हम पुराने फर्नीचर को भी आपको नया करके दिखा सकते हैं कि जी आपने अपनी चीज जाया नहीं करनी. आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको न्यू पेंट कर सकते हैं, आप उसको नया रंग नई जिंदगी उसके अंदर फूंक सकते हैं.
1: ये बेहतरीन है, आपने बड़ी खूबसूरत बात किया, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चीजों की बात करते हैं, अपने अम्मी की कोई प्यारी चीज है जो हमारे दिल से बड़ी करीब है और हम उससे जो है कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल जो है खुश हो जाता है. हम उसको कहीं और वेस्ट नहीं करना चाहते या उसको कहीं और रखना नहीं चाहते, तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है जो आपने बताया. अच्छा सना, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, आपके माइंड में क्या है? हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया है, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है. आप जरा बताइएगा फ्यूचर प्लान्स आपके कैफे के बारे में आपके क्या है.
13: कैफे के बारे में यही है कि ये एक जस्ट एक कैफे ना रहे, ये एक रिकग्नाइज्ड, मैं इसको क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे फूड कल्चर बिजनेस और कम्युनिटी एक साथ आए. मुस्तकबिल में मेरा यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और खवातीन नौजवान सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने आर्ट को शोकेस करें यहाँ पे. और सबसे बड़ा ख्वाब मेरा यही है कि अगर यहाँ आर्ट का लोग नाम सुने तो उनके पास सिर्फ एक कैफे ना आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएटिविटी क्वालिटी इंस्पिरेशन का तस्वर उनके जहन में आए. और शायद यही पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात होगी कि हम एक बिजनेस बिल्ड ना करें बल्कि हम एक लेगेसी बनाएं जो दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंस्पिरेशन दे.
1: ज़बरदस्त सना, ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है. और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं जो अपना नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम में स्किल्ड हों. आपको जो है इस तरह के अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे सना ने बात की इनके कैफ़े में कि बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उन वर्कशॉप्स पर आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, ताकि जो है रंगों से न सिर्फ आप खुश خوش ہوں بلکہ رنگوں سے آپ کو کھیلنا بھی آنا چاہیے آپ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور کریٹیو بنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو رنگوں سے بھری ہوئی ہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت ساری گرینری ہے گرین کلر ہے ریڈ کلر ہے یلو کلر ہے مطلب آپ جتنا رینبو کے کلر سے بھی آپ نکالیں چیزیں تو بہت ساری ایسی زندگی ہے جو رنگوں سے بھر جاتی ہے اور زندگی میں رنگینیاں بھی لوگوں کے اچھے اخلاق سے اور اچھی چیزوں سے صدقہ جاریہ سے آتی ہے تو آپ اپنے اس کام کو سنا جاری رکھیے گا اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ آپ مستقبل میں ضرور کامیاب ہوں گی اور اسی طرح اپنا علم آپ سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت وہ بنتی چلی جائیں بہت شکریہ آپ کے اس ساتھ کا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ
0: تھینک
1: یو جی تھینک یو ویری مچ یہ تھی ہمارے ساتھ ثنا عثمان
20: لسن ٹو سم تھنگ فریش لسن ٹو سلام میڈیا It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
21: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu. Wa habbaba ilayhim al-imana liyadhkuruhu. Wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuruhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbih. الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صدق اللہ العظیم One of the verses recited today in Surah Hujurat it just gives you shivers in your body وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ Allah reminds the Sahaba the congregation of the Sahaba the galaxy of Sahaba That remember well, in your presence is the greatest human. Like try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا